गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन में लय दीन दयाल सदा कृपाल बिनस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यों लागो हेत खिर मैं बिनस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रखनहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक उसदा प्रतपार है पगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जमते राखै दे कर हाथ निर्मल शोभा निर्मल रीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान भैरव महला पंजवां करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै पंजन अबनासी राए दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखाओ तेरी सरना बल बल जाई सदगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गहलीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास सदा आनंद नाही के सोग दुख दर्द न व्यापै रोग सब किश तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार निर्मल सोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किश प्रभ ते होए पैरव महला पंजवां मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूर्ण करने आठ पहर।

कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा, सो जन आया प्रभ की सरना। आप पवित्र पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरो महला पंजवा। नाम लै तो किस बिग ना लागे, नाम सुन तो जम दूरों भागे। नाम लै तो सब दुखे नास, नाम जप तो हर चरण निवास। निर्विघ्न भगत भज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ। हर सिमर तो किस चाख ना जो है, हर सिमर तो दैत देव ना पुहै। हर सिमर तो मोह मान ना बदै, हर सिमर तो गर्भ जो ना रुदै। हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माया अकेला। जात अजात जपै जन कोए, जो जपै तिसकी गत होए। हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूर्ण रंग। नानक कहो प्रभ कृपा तार, सा सा सर देहो चितार। पैरो महला पंजवा। आपे सास्ते आपे भेद, आपे कटकट जाने भेद। ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूर्ण समरथ। प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुखिया राधाओ। दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ। आपे वन त्रिण त्रि पवन सार, जाकै सूत प्रोया संसार। आपे शिव शक्ति संजोगी, आप निर्वाणी आपे भोगी। जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए। सागर तरिए नाम कै रंग, गुण गावे नानक साध संग। मुकत भुगत जुगत वस जाकै, ऊणा नाही किस जनता कै। कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास सही जन तन। पहरो महला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद। अस्थित पए बिनसी सब चिंद, पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे। पार ब्रह्म वसिया मन आए, राम राम संत सदा सहाय। कर बाहर नाले परमेश्वर, रव रहा पूर्ण सब ठाए रहाओ। धन माल जोबन जुगत गोपाल, जी प्राण नित सुख प्रतपाल। अपने दास कौ दे राखे हाथ, निमख ना छोड़ै सद ही साथ। हर सा प्रीतम अवर ना कोए, सार संभाले साचा सोए। मात पिता सुतबंध नारायण, आद जुगाद भगत गुण गायण। तिसकी तार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर। नानक कै मन एहो प्रखार्थ, प्रभु हमारा सारे स्वार्थ। पहरो महला पंजवा, पह कौ पौ पड़िया सिमरत हर नाम। सगल ब्याद मिटी त्रह गुण की, दास के होए पूर्ण काम रहाओ। हर के लोक सदा गुण गावे, तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्श बांछे दिन राती, होए पुनीत धर्म राय जाम। काम क्रोध लोभ मद निंदा, साध संग मिटिया अभिमान। ऐसे संत भेटे वडभागी, नानक तिनकै सत कुरबान।

हर के नाम बिना सब झूठ, बिन गुर पूरे मुक्त ना पाई है, साची दरगह सख्त मूठ रहाओ। सोई कुचील कुदरत नहीं जाने, लीपिया थाए ना सोच हर माने, अंतर मैला बाहर नितोवे, साची दरगह अपनी पत खोवे। माया कारण करे उपाओ, कब न कल सीधा पाओ, जिनकी

जिसनो कर्म करे करतार, साध संग होए तिस व्यवहार, हर नाम भगत स्यों लागा रंग, कहो नानक तिस जन नहीं भंग, पहरो महला पंजवां, निंदक कहो फिटके संसार, निंदक का झूठा व्यवहार, निंदक का मैला आचार, दास अपने को रखनहार, निंदक मुआ निंदक के नाल, पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे, निंदक कै सर कड़क्यो काल रहाओ, निंदक का कहया कोई ना माने, निंदक झूठ बोल पछताने, हाथ पिछोरे सिर तरन लगाहे, निंदक कहो दई छोड़े ना है, हर का दास किश बुरा ना मांगे, निंदक कहो लागे तुक संग, बगले ज्यो रहा पंख पसार, मुक्ते बोलिया ता कढ़िया बीचार, अंतरजामी करता सोए, हर जन करे सो निचल होए, हर का दास साचा दरबार, जन नानक कहया तत बीचार, पैरो महला पंजवां, दोए कर जोर करो अरदास, जियो पिंड तन तिसकी रास, सोई मेरा स्वामी करने हार, कोट बार जाई बलिहार, साधु तूर पुनीत करी, मन के विकार मिटे प्रभ सिमरत, जन्म जन्म की मैल हरी रहाओ, जाके गृह मैं सगल निदान, जाकी सेवा पाइये मान, सगल मनोरथ पूर्ण हार, जी प्राण भगतन आधार, घट घट अंतर सगल प्रगास, जप जप जीवे भगत गुणतास, जाकी सेवना बिरथी जाए, मंतन अंतर एक ते आए, गुर उपदेश दया संतोख, नाम निदान निर्मल एहो थोक, कर कृपा लीजे लड़ लाए, चरण कमल नानक नित्य आए, पैरों महला पंजवां, सतगुर अपने सुनी अरदास, कार्य आया सगला रास, मानता ने अंतर प्रभु ते आया, गुर पूरे डर सगल चुकाया, सब ते वड समर्थ गुरदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव रहाओ, जा का किया सब किश होए, तिसका अमर न मेटे कोए, पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप, सफल मूर्त गुर तिसका रूप, जा कै अंतर बसै हर नाम, जो जो पेखै सो ब्रह्म ज्ञान, बीस बिसोए जा कै मन प्रगास, तिस जन कै पार ब्रह्म का निवास, तिस गुर कौ सद करी नमस्कार, तिस गुर कौ सद जाऊं बलिहार, सतगुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर नानक जप जप सद जीवा। राग भैरव महला पंजवां, पड़ताल कर तीजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, परत पाल प्रभ कृपाल, कवन गुण गनी अनक रंग बहुत रंग, सर्ब को तनी रहाओ, अनक ज्ञान अनक ध्यान, अनक जाप जाप ताप, अनक गुणत तुंत ललत, अनक धार मुनि, अनक नाद अनक बाज, निमख निमख अनक स्वाद, अनक दोख अनक रोग, मिटे जस सुनी नानक से व्यापार देव, तटे खटे बर्त पूजा, गवन पवन जात्र करन सगल फल पुनी, भैरव अष्टपदिया महला पहला, कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद, आत्म मैं राम राम मैं आत्म, चिन्स गुर बिचारा, अमृत बाणी शब्द पछाणी, दो काटे हो मारा, नानक हो मैं रोग बुरे, जै देखा तै एका बेदनु, आपे बख्शा सब तुरे रहाओ, आपे परखे परखण हारे, बहुर सूलाक ना होई, जिन कौ नदर पई गुर मेले, प्रपाणा सच सोई, पौन पानी बैसंतर रोगी, रोगी धरत सपोगी, मात पिता माया देह से रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी,
रोगी ब्रह्मा बिशन सरुद्रा रोगी सगल संसारा हर पद चीन भय से मुक्ते गुर का शब्द विचारा रोगी सात समुद सन दिया खंड पताल से रोग परे हर के लोक से साज सोहेले सर्बी था ही नदर करे रोगी खट दर्शन पेख तारी नाना हठी अनेका बेग तेब करे कै बपरे ने बुझे एक एका मेठ रस खाए सरोग परी जय कंद मूल सुख नाही ना विसार चले अन मार्ग अंत काल पछताही तीर्थ परमै रोग न छूटस पढ़िया बाद विवाद भया दुबदा रोग सो अधिक वडेरा माया का मोहताज भया गुरमुख साचा शब्द सलाह है मन साचा तिस रोग गया नानक हर जन अंदर निर्मल जिनको कर्म निशान पया पैरो महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिन करता कि चल तो पाया अनहद बाणी शब्द सुनाया मनमुख भूले गुरमुख बुझाया कारण करता करदा आया गुर कया शब्द ते मेरे अंतर ध्यान कवो ना छोड़ो हर का नाम रहाओ पिता प्रहलाद पंड पठाया लै पाटी पंदे कह आया नाम बिना ने पढ़ो आचार मेरी पटिया लिख दे हो गोबिंद मुरार पुत्र प्रहलाद से कहया माए पर व्यर्त ना पढ़ो रही समझाए निरपव दाता हर जियो मेरे नाल जे हर छोड़ो तो कुल लागे गाल प्रहलाद सब चाटड़े विगारे हमारा कहया ना सुना अपने कार्य सवारे सब नगरी मैं भगत रड़ाई दुष्ट सभा का किश ना मसाई संडे मरके की पुकार सबे दैत रहे चख मार भगत जना की पत राखे सोई कीते कीते कह कया क्या होई किरत संजोगी दैत राज चलाया हर ना बूझे तनिया भुलाया पुत्र प्रहलाद से वाद रचाया अंधा ना बूझे काल नेड़े आया प्रहलाद कोठे विच रखिया बार दिया ताला निरपव बालक मूल ना डरई मेरे अंतर गुर गोपाला कीता होवे श्री की करे अनहोंदा नाउ तराया जो तुर लिखिया सो आए पहुता जन स्यो वाद रचाया पिता प्रहलाद स्यो गुर जो उठाई कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई जग जीवन दाता अंत सिखाई जैन देखा तरिया समाई थामे ओ पाड़ हर आप दिखाया अहंकारी दैत मार पचाया भगता मन आनंद वजी वधाई अपने सेवको दे वड़ियाई जमण मरना मोह उपाया आवन जाना करता लिख पाया प्रहलाद कै कार्य हर आप दिखाया भगता का बोलिया गया आया देव कुली लक्ष्मी को करे जयकार माता नरसिंह का रूप निवार लक्ष्मी पहो करे ना सके जाए प्रहलाद जन चरणी लागा आए सतगुर नाम निदान दृढ़ाया राजमाल झूठी समाया लोभी न रहे लपटाए हर के नाम बिन अंदर गै मिला सजाए कह नानक सबको करे कराया से प्रमाण जिन्नी हर स्यों चित लाया भगता का अंगीकार करदा आया करता अपना रूप दिखाया पैरो महला तीजा गुर सेवा ते अमृत फल पाया हम मैं तृष्ण बुझाई हर का नाम हृदय मन वसिया मन सामने समाई हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे आन दिन हर गुण दीन जन मांगे गुर कै शब्द उधारे रहाओ संत जना को जम जोह ना साके रति अंच दुख ना लाई आप तरह सगले कुल तारे जो तेरी शरण आई।

रहाओ मिथ्या जेहबा अवरे काम, निर्वाण पादो एक हर को नाम। असंख कोट अन पूजा करी, एक ना पूजस ना मैं हरी। प्रणवै नाम देओ एहो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ताके निकट बसै नर हरी। जो ना पजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनके पीतर है अंतरा, जैसे पस्त ऐसे होए नरा। प्रणवत नाम देओ ना कै बिना, ना सोहै बत्तीस लखना। दूध कटोरै गड़वै पानी, कपल गाए नामै दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हर आग्या धरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रच ता कहो करो सिंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू पूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू पूम पै आर ना पावै। पंत नाम देव एक नाम निस्तार है, जे गुर मिले ते पार उतार है। हस्त खेल तो तेरे देहुरे आया, भगत कर तो नामा पकड़ उठाया। हिन्नड़ी जात मेरी जात मराया, शिपे के जन्म काहे कवाया। रहाओ लै कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछे बैठा जाए। ज्यो ज्यो नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देहुरा फिरै। पैरो नाम देओ जियो कर दूजा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत्या नाज, त्रिखावंत जल सेती काज। जैसी मूड़ कुटम परायण, ऐसी नामे प्रीत नारायण। नामे प्रीत नारायण लागी, सह सुभाए पयो बैरागी। रहाओ जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहो ना तूटस रया समाए, नामे चित लाया सचनाए। जैसी प्रीत बार क्यार माता, ऐसा हरसे ती मन राता। प्रणवै नाम देव लागी प्रीत, गोविंद बसै हमारे चीत। कर की नार त्या गए अंदा, पर नारी सो काल है तंदा। जैसे सिंबल देख सुआ बिकसाना, अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का कर अग्नि माहे, जलत रह मिटवै कब नाहे। रहाओ हर की भगतना देखै जाए, मार्ग छोड़िया मार्ग पाए। मूलों पूला आवै जाए, अमृत डार लाद बिख खाए। ज्यों बेसवा के परया खारा, कापर पहर करै सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वाके गले जमका है फास। जाके मस्तक लिखियो करमा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम देव एहो बिचार, इन बित संतो उतरो पार। संडा मरका जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सब बिगारे। राम नामा जप बो करै, हृदय हर जी को सिमरन धरै। रहाओ बसदा बस कीनी, सब राजे बिनती करै पटरानी।
पूत प्रहलाद कया नहीं माने तिन तौ और ठानी दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औद कनेरी गिरताल जल ज्वाला पै राखियो राजा राम माया फेरी काढ़ खड़ग काल पै कोप्यो मोहे बताओ जो तुहे राखे पीत पितांबर त्रिपवन तनी थंब माहे हर पाख हर नाकसो जिन नख बिदारियो सुर नर किए सनाथा कह नाम देव हम नर हर त्याव राम अप है पद दाता सुल्तान पूछे सुन बेनामा देखो राम तुम्हारे कमा नामा सुल्तान ने बांधला देखो तेरा हर बीठला रहाओ बिस्मिल गऊ देहो जी आए नातर गर्दन मारो उठाए बादशाह ऐसी क्यों होए बिस्मिल किया ना जीवे कोए मेरा किया कछु ना होए कर है राम होए है सोए बादशाह हो चढ़ो अहंकार गज हस्ती दिनो चमकार रुदन करे ना मैं की माए छोड़ राम की ना पजा खुदाए ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए करे गजेंद सुंड की चोट ना माए उबरे हर की ओट काजी मुल्ला करे सलाम इन हिंदू मेरा मलिया मान बादशाह बेनती सुने हो नामे सर पर सुना ले हो माल ले हो तो दोजक पराओ तीन छोड़ दुनिया को पराओ पावो बेड़ी हाथो तालो नामा गावे गुण गोपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह सात कड़ी जा बीती सुनी अजो ना आयो त्रिपवन तनी पाखंतन बाज बजायला गर चढ़े गोविंद आयला अपने भगत पर की प्रतपाल गरड़ चढ़े आए गोपाल कहे ता तरन एक ओडी करो कहे ता लेकर ऊपर तरो कहे ता मुई गऊ देव जी आए सब कोई देखे पति आए नामा प्रणवै सेल मसेल गऊ दुहाई बछरा मेल दूधै दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाए औकट की कट लगी आए काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए नामा कहे सुनो बादशाह एहो किश पतिया मुझे दिखाए इस पतिया कह परवान साच सील चलो सुल्तान नाम देओ सब रया समाए मिल हिंदू सब नामे पै जाए जो अब की बार ना जीवे गाए ता नाम देव का पतिया जाए नामे की कीर्त रही संसार भगत जनाले उधरिया पार सगल कलेस निंदक पया खेद नामे नारायण नाही भेद कर दूजा जाओ गुरदेव ता मिले मुरार जाओ गुरदेव ता उतरै पार जाओ गुरदेव ता बैकुंठ तरै जाओ गुरदेव ता जीवत मरै सत सत सत सत सत गुरदेव झूठ झूठ झूठ झूठ आन सब सेव रहाओ जौ गुरदेव ता नाम दृढ़ावै जौ गुरदेव ना दे दस्तावै जौ गुरदेव पंच दे दूर जौ गुरदेव ना मरबो चूर जौ गुरदेव ता अमृत बानी जौ गुरदेव ता कथ कहानी जौ गुरदेव ता अमृत देह जौ गुरदेव नाम जप लेह जौ गुरदेव पवन त्रै सूजै जौ गुरदेव ऊच पद बूजै जौ गुरदेव ता शीश आकाश जौ गुरदेव सदा साबास जौ गुरदेव सदा बैरागी जौ गुरदेव पर निंदा त्यागी जौ गुरदेव बुरा भला एक जौ गुरदेव ललाट लेख जौ गुरदेव कंध नहीं हिरै जौ गुरदेव देहरा फिरै जौ गुरदेव ता छापर छाई जौ गुरदेव सहज निकसाई जौ गुरदेव ता अठ सठ नाया जौ गुरदेव तन चकर लगाया जौ गुरदेव ता दवा दस सेवा जौ गुरदेव सब बिखमेवा
ਜੋ ਗੁਰ ਦੇਉ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਟੁੱਟੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੇਉ ਤਾਂ ਜਮ ਤੇ ਛੁੱਟੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੇਉ ਤਾਂ ਪਉ ਜਗ ਤਰੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੇਉ ਤਾਂ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੇਉ ਅੱਠ ਦਸ ਵਿਵਹਾਰ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੇਉ ਅਠਾਰੈ ਪਹਾਰ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਉ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈ, ਨਾਮ ਦੇਉ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ। ਪਹਿਰੋ ਬਾਣੀ ਰਵਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਉਪਜੈ ਨਹੀਂ ਆਸਾ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸਾ, ਵਰਨ ਸਹਿਤ ਜੋ ਜਾਪੈ ਨਾਮ, ਸੋ ਜੋਗੀ ਕੇਵਲ ਨੇ ਕਾਮ। ਪਰਚੈ ਰਾਮ ਰਵੈ ਜੋ ਕੋਈ, ਪਾਰਸ ਪਰਸੈ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਰਹਾਓ, ਸੋ ਮੁਨ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਖਾਏ, ਬਿਨ ਦੁਆਰੇ ਤ੍ਰੈਲੁਕ ਸਮਾਏ। ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਸਭ ਕੋਈ ਕਰੈ, ਕਰਤਾ ਹੋਏ ਸੋ ਅਨ ਪੈ ਰਹੈ, ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੁੱਲੀ ਬਨ ਰਾਏ, ਫਲ ਲਾਗਾ ਤਾ ਫੂਲ ਬਿਲਾਏ। ਗਿਆਨੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤੈ ਕਰਮੈ ਨਾਸ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਦਦ ਮਥੈ ਸਿਆਨ, ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਨ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਜਪਸਿਆ ਭਾਗ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਆਓ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸਵਾ, ਕਰ ਅਬਦਾਲੀ ਭੇਸਵਾ ਰਹਾਓ। ਜਿਨ ਆਕਾਸ ਕੁਲੈ ਸਿਰ ਕੀਨੀ, ਕੌਸੈ ਸਬਤ ਪਿਆਲਾ, ਚਮਰ ਪੋਸਕਾ ਮੰਦਰ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਬਿਦ ਬਨੇ ਗੋਪਾਲਾ, ਛੱਪਨ ਕੋਟਕਾ ਪਿਹਨ ਤੇਰਾ, ਸੋਲੈ ਸਹਿ ਸੇ ਜਾਰਾ, ਭਾਰ ਅਠਾਰੈ ਮੁਦਗਰ ਤੇਰਾ, ਸਹਿਨਕ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ। ਦੇਹੀ ਮਹਿਜਦ ਮਨ ਮੌਲਾਨਾ, ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰੈ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਸੋ ਕਾਇਨ ਤੇਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰੈ। ਭਗਤ ਕਰਤ ਮੇਰੇ ਤਾਲ ਸ਼ਨਾਏ, ਕਿਹ ਪੈ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰਾ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਸਵਾਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਫਿਰੇ ਸਗਲ ਬੇਦੇ ਸਵਾ। ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਦੋ ਤੁਕੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਹਾ ਮਹਾ ਮੁਮਾਰਖੀ, ਚੜਿਆ ਸਦਾ ਬਸੰਤ, ਪਰ ਫੜ ਚਿਤ ਸਮਾਲ ਸੋਏ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਬੋਲਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੈ ਸਾਰ ਰਹਾਓ। ਕਰਮ ਪੇੜ ਸਾਖਾ ਹਰੀ, ਧਰਮ ਫੁੱਲ ਫਲ ਗਿਆਨ, ਪਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਬ

है अंतर्यामी प्रभु दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीवै नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवा, राम रंग सब गए पाप, राम जपत कछ नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछ नाए फेर। बसंत हमारा राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोबिंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निगट पेख प्रभ करन हार, ई तूत प्रभ कार जसार, चरण कमल सों लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जाकै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपुरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओ अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभदास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवै हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवा, गुरचरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवै नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवै, बिन सतगुर दी सह बिललांती, सागत फिर फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पह बिन से निरपै पद पाया, गुरमिल नान खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया। अहित सिद्ध नवनिद एह, कर्म प्राप्त जिस नाम देह, प्रभ जप जप जीवै तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवा, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपनिया, प्रभ मिले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोबिंद रमन योग, जित रवै सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, से सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुणे अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवा, किल बिख बिनसे गाए गुना, आन दिन उपजी सही धुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित राताओ हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होवा साध तूर, नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवा, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप, सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरनी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाम,
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਸਾ ਪੂਰਾ ਕੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ। ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ, ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ, ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ, ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ, ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ, ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ, ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ, ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ, ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ, ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਬੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ। ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ, ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਜੀਤੋ, ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ, ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ, ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ, ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ, ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਬਸੰਤ

सोई तुझै पछाण है, तेरियां भगतां कौ बलिहारा, थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रहाओ, तेरी सेवा तुझते होवै और ना दूजा करता, भगत तेरा सोई तुद पावै जिसनों तू रंग तरता, तू वडदाता तू वडदाना और नहीं को दूजा, तू समर्थ स्वामी मेरा हो क्या जाना तेरी पूजा, तेरा महला गोचर मेरे प्यारे बिखम तेरा है पाना, कहो नानक टह पया द्वारा रख ले वो मुगदया जाना, बसंत हिंडोल महला पंजवां मूल ना बुझै अपना सूजै, परम व्यापी अहमनी पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी, मोहे निस्तारो निर्गुणी रहाओ, उपत परलो प्रभते होवै ए बिचारी हर जनी, नाम प्रभु के जो रंग राते कल मैं सुखिए से गनी, आवरे पाओ ना को सूजै नानक तरिए गुर बचनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बसंत हिंडोल महला नावा, साधो एहो तन मिथ्या जानो या पीतर जो राम बस्त है साचो ताहे पछानो रहाओ, एहो जग है संपत सुपने की देह का ऐडानो, संग तिहारै कछु ना चालै ताहे कहां लपटानो, उस्त निंदा दो पर हर हर कीर्त और आनो, जन नानक सब ही मैं पूर्ण एक पुरख भगवानो, बसंत महला नावा, पापी ही है मैं काम बसाए, मन चंचल जाते गयो ना जाए, रहाओ जोगी जंगम अर संन्यास, सब ही पर डारिये फास, जेह जे अर को नाम समार ते पवसागर उतरे पार, जन नानक हर की शरणाए दीजै नाम रह गुण गाए, बसंत महला नावा, माई मैं तन पायो हर नाम, मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ, माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान, लोभ मोहे परसना साकै गही भगत भगवान, जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया, तृष्णा सकल विनाशी मन ते नेज सुख माए समाया, जा कहो दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै, कहो नानक बिद की संपै को गुरमुख पावै, बसंत महला नावा, मन कहां बिसार्यो राम नाम, तन बिनसै जम स्यो परै काम रहाओ, एहो जग तुए का पहार तैं साचा मानिया के विचार, तन दारा संपत गृह कै संग न चालै समझ लेहे, एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग, बसंत महला नावा, कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग, कछ बिगड़ियो नाहन अजहो जाग रहाओ, सम सुपने कहो जग जान बिन सह शरमै साची मान, संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर पाइता है मीत, बार अंत की होए सहाए कहो नानक गुणता के गाए, बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ नाम नहीं चीत, नाम बिसार ग्रह देख पीत, मनुआ डोलै चीता नीत, जग स्यों तूटी झूठ प्रीत, काम क्रोध बिख बज्जर भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ, कर बालू का कुमन घेर बरखस बाणी बुद्ध बुदा हेर, मात्र बूंद ते तार चक फेर, सर्ब जोत नामे की चेर सर्ब उपाय गुरु सिर मोर, भगत करो पगला गौ तोर, नाम रताओ चाहो तुझे और, नाम दुराए चले सो चोर,
ਪਤ ਖੋਈ ਬਖਿਅੰਚਲ ਪਾਏ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਰਤੋ ਪਾਸਿਓ ਕਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨਸ ਪ੍ਰਭ ਰਜਾਏ। ਪੈ ਮਾਨੈ ਨਿਰਭਉ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਕਮਨ ਚਾਹੈ ਸੁੰਦਰ ਭੋਗ, ਪਾਨ ਫੂਲ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਰੋਗ, ਖੀਲੈ ਬਿਕਸੈ ਤੇ ਤੋ ਸੋਗ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤ ਕੀਨਸ ਹੋਗ। ਕਾਪੜ ਪਹਿਰਸ ਅਧਿਕ ਸਿੰਗਾਰ, ਮਾਟੀ ਫੂਲੀ ਰੂਪ ਬੇਕਾਰ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬਾਂਧੋ ਬਾਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਨਾ ਘਰ ਬਾਰ। ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਾਮ ਭਣੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ, ਪ੍ਰਿਉ ਸੇਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਧਾਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਬਿਖਤਿਆ ਸਨਿਵਾਸ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਬਿਖਤਿਆ ਸਨਿਵਾਸ।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम ना हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा ना है, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करण हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा

कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैसहो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतरस नाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांग, कह चंदन चोवा बहुत सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै लोग हसै, चरण कमल मेरा ही रह बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना।

नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा, लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा, संसार समुंदे तार गोबिंदे तार ले बाप बीठला, रहाओ अनल बेड़ा हो खेव ना सकाओ तेरा पार ना पाया बीठला, हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा, नामा कह हाँ तार पी ना जाना, मोको बहां दे बीठला, सहज अवल तूड़ मणि गाड़ी चालती, पीछे तिनका लेकर हागती, जैसे पनकत थ्रूट ठहाकती, सर तोवन चाली लाडली, रहाओ तो भी तो वह बिरा बिराता, हर चरण मेरा मन राता, पंत नाम देव रम रहया, अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तुझे सुजनता कशु नाहे, पहरावा देखे उपजाहे, गर्भवती का नाही ठाओ, तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ, तू काए गर्भ बावली, जैसे पांदव खूंब राज, तू तिस्ते खरी उतावली, रहाओ जैसे कुरंक नहीं पायो पेद, तन सुगंध ढूंढे परदेश, आप तन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुवार, पुत्र कलत्र का करे हंकार, उठाकर लेखा मंगनहार, फेड़े का दुख सह जियो, पाछे किसे पुकार है पियो पियो, साधु की जौ लेह ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट, कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुरह की जैसी तेरी चाल, तेरी पुष्ट ऊपर चमक बाल, इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे, और किसी के

अपने पह दुख, अपने पह सुखा, अपने ही पह बिरथा, अपने पह मान, अपने पह ताना, अपने ही पह अर्था। किन ही राज जोबन तन मिलखा, किन ही बाप महतारी, सर्ब थोक नानक गुर पाए पूर्ण आस हमारी। सारंग महला पंजवा, झूठो माया को मदमान, त्रोह मोह दूर कर बपरे, संग पाले जान रहाओ। मिथ्या राजोबन अर उमरे, मीर मलक अर खान, मिथ्या कापर सुगंध चतराई, मिथ्या भोजन पान। दीन बंदरो दास दासरो, संत की सारान, मंगर मंगो होया चिंता, मिल नानक के हर प्राण। सारंग महला पंजवा, अपनी इतनी कशु ना सारी, अनक काज अनक तावरता, उर्जो अन जंजारी रहाओ। देव सचार के दिस संगी उहा नाही जय पारी, तिन स्यों राच माच हित लायो, जो काम नहीं गावारी। हाँ नाही नाही किश मेरा, ना हमरो बस चारी, करन करावन नानक के प्रभ, संतन संग उधारी। सारंग महला पंजवा, मोहनी मोहत रह ना होरी, साधक सिद्ध सगल की प्यारी, तुटे ना काहू तोरी रहाओ। खड़ शास्त्र उचरत रसनागर, तीर्थ गमन ना थोरी, पूजा चक्र वर्त नेम तपिया, उहां गैल ना शोरी। अंध कू मह पतत होत जग, संतो करो परम गत मोरी, साध संगत नानक भयो मुक्ता, दर्शन पेखत पोरी। सारंग महला पंजवा, कहां करे रे खाट खाट ली, पवन अफार तोर चामरो, अत जजरी तेरी रे माटली रहाओ। उही ते हरियो उहाले तरियो, जैसे बासा मास देत चाटली, देवनहार बिसारियो अंदले, जो सफरी उधर भरे बैहाटली। साध बिकार बिकार झूठ रस, जै जानो तै भीर बाटली, कहो नानक समझ रे याने, आज काल खुले तेरी गांठली। सारंग महला पंजवा, गुर जियो संग तुहारे जाने, कोट जोद ओआ की बात ना पुछिए, तां दरगह पी माने रहाओ। कवन मूल प्राणी का कहिए, कवन रूप दृष्टाने, ज्योत प्रकाश पई माटी संग, दुलभ देह बखाने। तुम ते सेव तुम ते जपतापा, तुम ते तत् पछाने, कर मस्तक तरकटी जेवरी, नानक दास दसाने। सारंग महला पंजवा, हर हर दियो सेवक को नाम, मानसका को बपरो पाई, जा को राखा राम रहाओ। आप महाजन आपे पंचा, आप सेवक कै काम, आपे सगले दूत बिदारे, ठाकरे अंतर जाम। आपे पत राखी सेवकी, आपकी ओ बंधान, या जुगा दो सेवकी राख, नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजवा, तू मेरो मीत सखा हर प्राण, मन तन जियो पिंड सब तुमरा, एहो तन सीतो तुमरे तान रहाओ। तुम ही दिए अनक प्रकारा, तुम ही दिए मान, सदा सदा तुम ही पत राखो, अंतर जामी जान। जिन संतन जानिया तू ठाकरो, ते आए प्रवान, जनका संग पाइया वडभागी, नानक संतन कै कुरबान। सारंग महला पंजवा, करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समर्थ कारण करना, तूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बखई तुम तारे, समत संग तुम्हारे पाई, अनक जोन भ्रमते प्रभ विसरत, सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै, ते ते पदत पुनीता, कहो नानक जाके वडभागा, तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवा, ठाकुर बिनती करन जन आयो, सर्व सुख आनंद सहज रस, सुन तुहारो नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागरो, जा सब मैं जा को छायो, संत संग रंग तुम किए, अपना आप दृष्टायो। नैनो संग संतन की सेवा, चरण चारी के सायो, आठ पहर दर्शन

ना पीजै पेड़ मरै पेड़ सूर, ना पीजै केते होवै धूड़। लेखा लिखिया मन कै पाए, नानक पीजै साचै नाए। महला पहला नाम से खटका करे बिचार, निस दिन उचरै पार अठार। तिन पियंत ना पाया तो हे, ना बिहून मुक्त क्यों होए। नाभ वस्त ब्रह्म अंत न जानिया, गुरमुख नानक नाम पछाणिया। पौड़ी आपे आप निरंजना, जिन आप पाया आपे खिलर चायोन। सब जगत सवाया त्रै गुण आप सिरजन, माया मोह वधाया। गुर प्रसादी उबरे जिन भाणा पाया। नानक सच वरतदा सब सच समाया। श्लोक महला दूजा। आपो पाए नानका, आपे रखै वेक। मंदा किसनो वाखी जा, सबना साहिब एक। सबना साहिब एक है, वेखै तंदै लाए। किसै थोड़ा किसै अगला, खाली कोई ना है। आवै नंगे जाहे नंगे, विचे करै विथार। नानक हुक्म न जानिए अगै काई कार। महला पहला जिनस थाप जिया को भेजै, जिनस थाप लै जावै। आपे थापो थापै आपे, एते विस्करावै। जेते जी फिरै औदूती, आपे पिख्या पावै। लेखै बोलण लेखै चलण, काय तो कीचै दावे। मूल मत प्रवाणाए, हो नानक आख सुनाए। करनी उपर होए तपावस, जे को कहे कहाए। पौड़ी गुरमुख चलतर चायोन, गुण प्रगटी आया। गुरबाणी सद उचरै हर मन वसाया। सगत गई प्रम कटिया, शिव जो जगाया। जिनकै पोतै पुन है गुरपुरख मिलाया। नानक सहजे मिल रहे हर नाम समाया। श्लोक महला दूजा। साह चले वन जा रिया, लिखिया देवै नाल। लिखे उपर हुक्म होए, लइयै वस समाल। वस लई वन जा रही, वखर बद्दा पाए। केई लाह लै चले, चले मूल गवाए। थोड़ा किने ना मंगियो, किस कही ऐसा बास। नजर तिना कहो नानका, जे साबत लाए रास। महला पहला जोड़ जोड़ विछड़े, विछड़ जुड़े। जीव जीव मोए मोए जीवे। केत्या के बाप, केत्या के बेटे। केते गुरचेले हुए, आगे पाछे गणत ना आवै। क्या जाति क्या हुण हुए, सब करना किरत कर लिखी है। कर कर करता करे करे, मनमुख मरिय गुरमुख तरिय। नानक नदरी नदर करे। पौड़ी मनमुख दूजा परम है, दूजा लुभाया। कूड़ कपट कमाम दे, कूड़ वालाया। पुत्र कलत्र मोहित है, सब दुख सबाया। जमदर बदे मारी है, पर मैं परमाया। मनमुख जन्म गवाया, नानक हर पाया। श्लोक महला दूजा। जिन वड़ियाई तेरे नाम की, तेरते मन माहे। नानक अमृत एक है, दूजा अमृत नाहे। नानक अमृत मने माहे, पाइये गुर प्रसाद। तिन्नी पीता रंग स्यों, जिनको लिखिया याद। महला दूजा। कीता क्या साला ही है, करे सोए साला है। नानके की बाहरा, दूजा दाता ना है। करता सो साला ही है, जिन की तायाकार। दाता सो साला ही है, जे सबसे दे आधार। नानके आप सदीव है, पूरा जिस पंडार। वड्डा कर साला ही है, अंतना पारावार। पौड़ी हर का नाम निधान है, सेवे है सुख पाई। नाम निरंजन उचरा, पास्यो कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई। मत पंखेरु वस होए, सतगुरु ते आई। नानक आप दयाल होए, नामे लिवलाई। श्लोक महला दूजा। तिस स्यों कैसा बोलना, जे आपे जाने जान। चीरी जाकी ना फिरै साहिब सो प्रवान। चीरी जिसकी चलना, मीर मलक सालार। जोत सभावै नानका साई भली कार। जिन्ना चीरी

हाथ तिना किश ना है, साहिब का फरमान होए उठी कर ले पाहे। जिहा चिरी लिखिया तिहा हुक्म कमाहे, कले आवे नानका सदे उठी जाहे। महला दूजा सिफत जिन्ना को बख्शी है से ही पोतेदार, कुंजी जिन को दितिया तिना मिले भंडार। जय भंडारी हूं गुण निकले ते की है प्रवान, नदर तिना को नानका नाम जिना निशान पौड़ी। नाम निरंजन निर्मला सुनया सुख होई, सुन सुन मन वसाई है बुझे जन कोई। बहद्या उठद्या ना विसरे साचा सच सोई, भगतां को नाम आधार है नामे सुख होई। नानक मन तन रव रहया गुरमुख हर सोई, श्लोक महला पहला। नानक तुलिया तोल जे जियो पिछे पाईए, इक सुना पुजे बोल जे पूरा पूरा कर मिले। वड्डा आखण पारा तोल होर हौली मत्ती, हौले बोल धरती पानी पर्वत पार, क्यों कंडै तोले सुनियार। तोला मासा रतक पाए, नानक पुछां दे पुजाए, मूर्ख अंध्यां दी धात कह कह कहण कहान आप। महला पहला आखने औखा सुनने औखा, आखना जापी आख एक आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्द दिन रात। जे केहो होए ता केहो दिसै, जापै रूप ना जात, सब कारण करता करे काटे औ कट कट काट। काटे औ कट कट थाप, आखने औखा नानका आपना आखना जापै आख पौड़ी। नाए सुनया मन रेसी है नामे सांत आई, नाए सुनया मन तृप्ति है सब दुख गवाई। नाए सुनया ना उपजे नामे वडे आई, नामे ही सब जात पत नामे गत पाई। गुरमुख नाम ते आई है नानक लिवलाई, श्लोक महला पहला। झूठ ना रागी झूठ ना वेदी, झूठ ना चंद सूरज की भेदी। झूठ ना यानी झूठ ना नाई, झूठ ना मीहों वरे है सब थाई।

जाओ। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार कर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेह पर लोग जाए अपकीर्त, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली। शाड मानो हर बिमुखन को संग, सारंग महला पंजवां, सूरदास इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो, आनंद सहज धुन चोक रहाओ, दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यों काज ना कछु है, सुंदर बदन्या लोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, जो कुष्टी तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो इहो परलोक। सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बंता, हित लागो सब फन का रहाओ। आगे कहो किस तुल्हा बंद हो, क्या परवासा तन का, कहां बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठन का। सगल धर्म पुन फल पावहो, तूर बांछो सब जन का, कह कबीर सुनोरे संतो, एहो मन उडन पंखेरू बन का। राग मलार चौप दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना, खसम विसार खुवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपनी पासेती कर जावो रहाओ। तुदनो सेव है तुझ क्या देव है, मांगे लेवे रह नहीं, तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तुही। गुरमुख त्याव से मृत पाव, से ही सुचे हो ही, अहनिस नाम जपोरे प्राणी, मैले हच्छे हो ही। जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही, नानक रुत सुहावी साई, बिन नाम है रुत के ही। मलार महला पहला, करो बिनो गुरे अपने प्रीतम, हर वरे आन मिलावे, सुन कन कोर शीतल मन मोरा, लाल रती गुण गावे। बरस कना मेरा मन पीना, अमृत बूंद सुहानी हियर, गुरमोही मन हर सलीना रहाओ। सहज सुखी वर कामन प्यारी, जिस गुर बचनी मन मानिया, हर वर नार पई सोहागन, मंतन प्रेम सुखानिया। अवगन त्याग पई बैरागन, आस्तर वर सोहाग हरी, सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभ अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निर्मल, आवन जान नहीं मन निचल, पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सोहागन सच सही। मलार महला पहला, साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हों मैं करत गवाया, पर तन पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया, शब्द चीन पै कपट ना छूटे, मनमुख माया माया। अजगर पार लदे अत भारी, मर जन्मै जन्म गवाया, मन पावै शब्द सुहाया। भ्रम भ्रम जोन पेख बहु कीने, गुर राखे सच पाया रहाओ। तीर्थ तेज निवार ना नाते, हर का नाम ना पाया, रतन पदार्थ पर हर त्याग गया, जत को तत ही आया। बिष्टा कीट पय उतही ते, उतही महे समाया, अधक स्वाद रोग अधकाई, बिन गुर सहज नाम पाया। सेवा सुरत रहस गुण गावा, गुरमुख ज्ञान बिचारा, खोजी उपजय बादी बिनसै, हम बल बल गुर करतारा। हम नीच होते हीन मत झूठे, तू शब्द सवारनहारा, आत्म चीन तहां तू तारण, सच तारे तारनहारा। बैस सुथान कहां गुण तेरे, क्या क्या कथों अपारा, अलख न लखिए अगमा जोनी, तू नाथा नाथनहारा। किस पै देख कहो तू कैसा, सब जाचक तू दा तारा, भगतहीन नानक दर देखो, एक नाम मिले उर तारा। मलार महला पहला, जिन तन पिर का साधना जानिया, सा बिलख बदन कुमलानी, पई निरासी कर्म की फासी।
ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਉ ਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਅੰਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਭਏ ਗੁਰਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सवाए ओट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए। मलार महला पंजवा खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अग्न कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नवनिध नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछै सो लैसी। पिता कृपाल आग्या हे दीनी बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करिया, तजो सगला देसा कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पए सुहेले प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पए आनंदा गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ न जाई दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते किरपा निध छोड़ आन कौ पूजै आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बहु जोनी टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते कागर नाव लंघै कथ सागर, बिरथा कथत हम तरते। सेव बिरंच असुर सुर जेते काल अग्न में जरते, नानक सरन चरण।

आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाओ। तुनत ललत गुनग अनक भांत बहुबिध रूप दिखावनी निकी। गिर तर थल जल पवन भरपुर घट घट लालन छावनी निकी। साध संग रामैया रस पायो नानक जाकै पावनी निकी। मलार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल होरे दे अंतर तारे। रहाओ दर्स सफल्यो दर्स पेख्यो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे। बिसम बिसमै बिसम पई अड़ग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे। मलार महला पंजवा बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल भाग। रहाओ संत संगे मन पर फड़ै मिल मेघ तर सुहाग। कन कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया। मलार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत। रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग। हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत। पार ब्रह्म भय दयाल बिनस गए बिखै जंजाल। साध जना कै चरण लाग नानक गावै गोविंद नीत। मलार महला पंजवा कन गरजत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन। रहाओ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन। पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन। हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन। मलार महला पंजवा हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। रहाओ प्राण नाथा नाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ गम पूर्ण मोहे मया तार। अंधकूप महापयान नानक पार उतार। मलार महला पहला अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चकवी नैन नींद न चाहे बिन

तुमरी शरण परे पत रखो साच मिलै गोपाला। बांदी तंद अंध नहीं सूझै बदक कर्म कमावै सतगुर मिलै ता सूझस बूझस सच मन ज्ञान समावै। निर्गुण देहे साच बिन साची निर्गुण देहे साच बिन काची मैं पूछो गुरे अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावै बिन साचे जग सुपना। मलार महला पहला चातर कमीन जल ही ते सुख पावै सारंग शब्द सुहाई। रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रहाओ प्रे स्यों प्रीत ना उल्टै कबहू जोतै पावै साई। नींद गई हम मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई। रूखी बिरखी उडो भूखा पीवा नाम सुभाई। लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्या सिरजाई। प्रे बिन सिंगार करी तेता तन तापै कापरे अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सका बिन मिले नींद ना पाई। पिर नजीक ना बूझै बपड़ी सतगुर दिया देखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुई ते मन मानिया कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अखली।

रहाओ सतगुर शब्दी पादर जान गुर कह तकिय सच तान नाम समारस रूढ़ी बाण थै पावे दरले स्पिराण ऊंडा बैसा एक लिवतार गुर कै शब्द नाम आधार ना जल डूंगर ना उची तार निज करवासा तह मगना चल नहार जित कर वसै तू है बिद जाने बीजो महल ना जापै सतगुर बाजो समझ ना होवी सब जग दग ब्याशा पै करण पलाव करै बिल लातो बिन गुर नाम ना जापै पल पंकज मैं नाम छड़ाए जे गुर शब्द सिंपै एक मूर्ख अंधे मुक्त गवार एक सतगुर कै पै नाम आधार साची बाणी मीठी अमृत धार जिन पीती तिस मुख द्वार नाम पै पाए हृदय वसाही गुर करनी सच बाणी इंद वरसै तरत सुहावी कट कट जोत समाणी कालर बीजस दुरमत ऐसी निगुरे की निशानी सतगुर बाजो कोर अंधारा डूब मोए बिन पानी जो किश कीनो सो प्रभु रिजाए जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए हुक्मे बांधा कार कमाए एक शब्द रचै सच समाए चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा चहो दिस नाम पतालं सब मैं शब्द वरतै प्रभ साचा कर्म मिलै बयालं जामन मरना दिसै सिर उबो खुदया निंद्रा कालं नानक नाम मिलै मन पावै साची नदर रसालं मलार महला पहला मरण मुक्त गत सार ना जाने कंठे बैठी गुर शब्द पछाने तू कैसे आड़ फाथी जाल अलख ना जा चर दे समाल रहाओ एक जी कै जिया खाही जल तरती बूढ़ी जल माही सर्व जी की ये प्रतपानी जब पकड़ी तब ही पछतानी जब गल फास पड़ी अत पारी ऊंडना सांक पंख पसारी रस चूगे मन मुख गावार फाती छूटे गुण ज्ञान विचार सतगुर सेव टूटे जमकाल हृदय साचा शब्द समाल गुरमत साची शब्द है सार हर का नाम रखे उरतार से दुख आगे जे भोग बेला

रंग रहया तिन कामणी जिन मन पाओ पाओ होए नानक पै पाए बाहरी तिन तन सुख ना होए। महला तीजा ऊनम ऊनम आया वरसै नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंतै स्यो मन भंग। पौड़ी दोवै तरफा उपाए एक वरतिया बेद बाणी वरताए अंदर वाद कत्या पर विरत नर विरत हाठा दोवै विच धर्म फिरै रह बारिया मनमुख कच्चे कूड़िया तिन्नी नीचो।

मासो ही मासी उपजै, मासो सबो साक। सतगुर मिलिया हुक्म बुझिया, ताको आवै रास। आप छुटे न छुटिया, नानक बचन विनास। महला पहला। मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मास कौन साग कहावै, किसमें पाप समाने। गेंडा मार होम जग किए, देवतियां की बाने। मास छोड़ बैस नक पकड़े, राती मान सखाने। फड़ कर लोका नो दिखलावे, ज्ञान ध्यान नहीं सूझे। नानक अंधे से क्यों कहिए, नानक अंधे से ओ क्या कहिए। कहे न कहे आबूजे, अंधा सोए जे अंध कमावे। तिस हृदय से लोचन नाही, मात पिता की रक्त निपन्ने। मच्छी मांस ना खाही, स्त्री पुरख है जानिस मेला। उथे मंद कमाही, मासो निम्मे मासो जम्मे। हम मासे के पांडे, ज्ञान ध्यान का सूझे नाही। चतर कहा वह पांडे, बाहर का मास मंदा स्वामी। घर का मास चंगेरा, जी जंत सब मासो होए। जी लया वासेरा, अपख पखे पख तज छोडे। अंध गुरु जिन केरा, मासो निम्मे मासो जम्मे। हम मासे के पांडे, ज्ञान ध्यान कछ सूझे नाही। चतर कहा वह पांडे, मास पुराणी मास कते भी। चह युग मास कमाना, जज काज भी आहे सुहावे। उथे मास समाना, स्त्री पुरख निपजै मासो। पातशाह सुल्ताना, जे ओए दिसै नरक जांदे, ता उनका दान ना लैना। देंदा नरक सुर्ग लैंदे, देखो एह तिंगाना। आप न बुझै लोक बुझाए, पांडे खरा सियाणा। पांडे तू जाने ही नाही, किथों मास्यो पन्ना। तोयो अनक मादक पाहा, तोयो त्रिभवन गन्ना। तोवा आखे हाँ बो विधाचा, तो वै बहुत बिकारा। एते रस छोड़ होवै सन्यासी, नानक कह विचारा। पौड़ी हाउ क्या आखा एक जीव, तेरा अंतरा कि नहीं पाया। सच्चा शब्द विचार से तुझी वाय समाया। एक भगवा वेस्कर परम देवन, सतगुर करे ना पाया। दे दसंतर पव थके, तुद अंदर आप लुकाया। गुर का शब्द तन है, कर चानने आप दिखाया। अपना आप पछाणिया, गुरमति सच समाया। आवा गुण बजारिया, बाजार जिनी रचाया। एक थिर सच्चा सलाहना, जिन मन सच्चा पाया। सलोक महला पहला। नानक माया कर्म बिरख, फल अमृत फल वेस। सब कारण करता करे, जिस खवाले तिस। महला दूजा। नानक दुनिया किया वड़ियाईया, अग्गी से तीजाल। इनी जली ना विसारे, आयक ना चलिया नाल। पौड़ी सिर सिर होए नबेड़, हुक्म चलाया तेरे हथ नबेड़। तू है मन पाया, काल चलाए बन। कोई ना रखसी जर जर वाणा कन, चढ़िया नचसी। सतगुर बोथ बेड़, सच्चा रखसी। अगन पखे पड़हार, अंदर पक्षी। फाथा चुगे चोग, हुक्मी छुटसी। करता करे सहोग, कून निखुटसी। सलोक महला पहला। घर मैं घर दे खाए दे, सो सतगुर पुरख सुजान। पंच शब्द तुनकार तुन, तह बाजे शब्द निशान। दीप लो पाताल तह, खंड मंडल हैरान। तार कोर बाजंतर तह, साज तख्त सुल्तान। सुख मन कह कर राग सुन, सुन मंडल लिव लाए। कथ कथा बिचारी है, मनसा मन समाए। उल्ट कमल अमृत भरिया, एहो मन कतो ना जाए। अजप्पा जापना विसर, आज जुगा समाए। सब सखियां पंचे मिले, गुरमुख निज करवास।
ਸ਼ਬਦ ਖੋਜਿਓ ਕਰ ਲਹਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਚਿਲ ਮਿਲ ਬਿਸਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਕਾਲੂਬ ਅਕਲ ਮਨ ਗੋਰ ਨਾ ਮਾਨੀ ਮਨ ਕਮੀਨ ਕੰਮ ਤਰੀਨ ਤੂੰ ਦਰੀਆ ਖੁਦਾਇਆ ਏਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਜੈ ਦੇਹ ਅਵਰ ਜਹਿਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੁਰਾਬ ਖਾਮ ਕੂਜੈ ਹਿਕਮਤ ਖੁਦਾਇਆ ਮਨ ਤੋਂ ਆਨਾ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਇਆ ਸਗ ਨਾਨਕ ਦੀਵਾਨ ਮਸਤਾਨਾ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਨਵੀਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਚਲਤ ਚਲਤ ਵਖਾਣਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ ਲੱਥੇ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੀ ਸਾਣਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਦਾਰ ਪਹਿ ਨਿਕਾਣਿਆ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਦਾ ਤਾਰ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਮਿਹਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਣਿਆ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣਿਆ ਨਾਨਕ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਖਸਮੈ ਪਾਣਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧਨ ਧਨ ਭਾਂਡਾ ਤਨ ਮਸ ਧਨ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮੇ

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, हौं बलबले हौं बलबले, जन नानक हर जप पही, निहाल निहाल निहाल। कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचे लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ। हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे जप जपो जगदीश, तुमरे जन राम जपे ते उत्तम, तिन कहो हाँ कुम कुमे कुम कुम जीस। हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करै जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस। कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप नारेख वडाम, सतसंगत मिल पज राम, बड हो पाग मथाम रहाओ। जित ग्रह मंदिर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम। सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम। कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ। खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाई हर ब्रह्म जोग हर पाई है, सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू भरपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझे आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे कट हर काट। कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो, मत गुरमत हर प्रबला दो, तुर हो लिखे लिला दो रहाओ, बिख माया संच बहु चित बिकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी, मिल सत गुरु गुर साधो, ज्यो शोहे पारस मनूर पए कंचन, त्यो पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमति सुधादो, ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता, त्यो पापी संग तरे, साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधो, चार वर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुर नानक, सो आप तरे गुर सगल तरा दो। कानड़ा महला चौथा, हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान रहाओ। तेरे जन त्यावे एक मन एक चित, ते साधु सुख पावे, पज हर हर नाम निधान, उस्तत करह प्रभ तेरिया, मिल साधु साध जना गुर सतगुरु भगवान, जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे, ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर

हार नहीं सब जेतै, सोग नाही सदा हरखी है रे, छोड़ नाही किछ लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भए तेह संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेउ तेउ गह रहे अटकाए, अनक पांत की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं शोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संत नहीं सरनाए, काटे अज्ञान परम हो माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग बिनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवनो, नाम हमारे प्राणाधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इशनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल बिखम नाम हर तार है, अगम पदार्थ लाला मोला, भयो प्राप्त गुर चरनार है, कहो नानक प्रभय कृपाला, मगन पय ही अरै दरसार है, कानड़ा महला पंजवा, साजन मी स्वामी नेरो, पेखत सुनत सबन कह संगे, थोरै काज ब्रो कह फेरो रहाओ, नाम बिना जेतो लपटायो, कछु नहीं नाही कछ तेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहां मोहयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दा तार बसेरो, कहो नानक एक है पारो सौ, बंधन काटन हार गुरमेरो, कानड़ा महला पंजवा, बिखै दल संतन तुमरै गायो, तुमरी टेक भरोसा ठाकरो, शरण तुम्हारी आयो रहाओ, जन्म जन्म के महाप्राहित, दर्शन पेट मिटाहयो, पयो प्रगास अन दुजियारा, सहि समा समाहयो, कौन कहे तुम ते कछ नाही, तुम समर्थ अथाहयो, कृपा निधान रंग रूप रस, नाम नानक लै लाहयो, कानड़ा महला पंजवा, बूढ़त प्राणी हर जप धीरै, बिनसै मोह परम दुख पीरै रहाओ, सिमरो दिन रैन गुर के चरना, जत खत पेखो तुमरी सरना, संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर भेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मनै सुख पाईऐ, साजना मिल हर जस गाईऐ, रहाओ कर कृपा प्रभदै बसेरो, चरण संदर के माथा मेरो, पार ब्रह्म को सिमरो मना, गुरमुख नानक हर जस सुना, कानड़ा महला पंजवा, मेरे मन प्रीत चरण प्रप्रसन, रसना हर हर भोजन तृप्तानी, अखियन को संतोख प्रभ दर्शन, रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम, कल मल दोग सगल मल हरसन, पावन तावन स्वामी सुख पंथा, अंग संग काया संत सरसन, शरण गही पूर्ण अविनाशी, आनो पाव थकत नहीं करसन, कर गए लिए नानक जन अपने, अंध घोर सागर नहीं मरसन, कानड़ा महला पंजवा, कोह कत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ, अहं मातो आन रात कुमित हित प्रीतम, पेखत भ्रम लाग गरिया, अनित व्यवहार आचार विधहीनत, मम मद मात कोप जरिया, करण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उदर सरन परिया, कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता, हर बिसरते ही हान रहाओ, गोबिंद त्याग आन लागे, अमृतो डार पूम पागे, बिखैरा स्यो आसक्त मूड़े, काहे सुखमान, काम क्रोध लो व्याप्यो, जन्म ही की खान, पतत पावन शरण आयो, उदर नानक जान, कानड़ा महला पंजवा, अवलोको राम को मुखार बिंद, खोजत खोजत रतन पायो, बिसरी सब चिंद रहाओ, चरण कमल हृदय तार, उतरिया दुख मंद, राज तन परवार मेरा, सर्ब सो गोबिंद, साध संगम लाभ पायो, नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा, घर पंजवा, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, प्रभ पूज हो नाम आराद, गुर सतगुर चरनी लाग, हर पाव मन आगाद, जग जीतो हो गुर कृपाद, रहाओ अनक पूजा मैं बहुविध।

प्रभां पकर जिस मार्ग पाव सो तुद जंत मिलास। अवर ओट में कोई न सूझै एक हर की ओट में आस। क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास। प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा। हाँ बल बल सत बल जास। कानड़ा महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जगत उदारण नाम प्रे तेरे नवनिध नाम निदान हर के रह। हर रंग रंग रंग अनूपे रह काहे रे मन मोहे मगने रह। नैनो देख सा दर्शे रह सो पावे जिस लिखत लले रह। रहाओ सेवा सेवो सेवो साध संत चरने रह। बांछो तूर पवित्र करे रह। अठ सठ मज्जन मैल कटे रह। सास सास त्यावो मुख नहीं मोरै। किछ संग ना चाले लाख करो रह। प्रभ जी को नाम अंत पकरो रह। मनसा

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर के रै। कानड़ा महला पंजवां, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ। आस प्यास सफल मूर्त उमग ही ओ तरसना, दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना। हर संतना की रेन ही ओ अर्प देन, प्रभ पय है कृपेन। मान मोह त्याग छोड़ आओ तो नानक हर जियो भेटना। कानड़ा महला पंजवा, रंगा रंग रंगन के रंगा, कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ। बर्त नेम तीर्थ सहत गंगा, जल हेवत भूख अर नंगा। पूजा चार करत में लंगा, चक्कर कर्म तिलक खा टंगा। दर्शन भेटे बिन सतसंगा, हठ निगरह अत रहत बिटंगा। हाँ रोग व्यापै चुकै न पंगा, काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा। सो मुक्त नानक जे सतगुर चंगा। कानड़ा महला पंजवां, कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तिख बूझ गई गई मिल साध जना, पंच भागे चोर सहजे सुखैनो। हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रहाओ। जैसी करी प्रभ मोसियो मोसियो, ऐसी हो कैसे कराऊं। हियो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई, पहले पै संत पाए। त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान थे रोके हरो। जित जंतन कर विचार, अनक दास कीर्त करे तुहारी। सोई मिलियो जो भाव तो, जन नानक ठाक रहो समाए। एक तू ही तू ही तू ही। कानड़ा महला पंजवां, कर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्यागी है गुमान मान, पेखता दयाल लाल। हां हां मन चरण रेन रहाओ। हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान, हृदय गोबिंद गाए। चरण कमल प्रीत लाए, दीन दयाल मोहना। कृपाल दया मया तार, नानक मांगे नाम दान। तज मोह परम सगल अभमान। कानड़ा महला पंजवां, प्रभ कहन मलन दहन लहन। गुर मिले आन नहीं उपाओ रहाओ। तटन खटन जटन होमन, नाही डंड धार सुवाओ। जतन पांतन तपन भ्रमन, अनक कथन कथते नहीं थहां पाई ठाओ। सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाओ। कानड़ा महला पंजवां, करनावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पतत पावन भगत पवचल, पै हरन तारन तरन रहाओ। नैन तिबते दर्श पेख, जस तोख सुनत करन। प्राण नाथ या नाथ दाते, दीन गोबिंद सरन। आस पूर्ण दुख बिनासन, गही ओट नानक हर चरण। कानड़ा महला पंजवां, चरण सरण दयाल ठाकर आन नाही जाए। पतत पावन बिरद स्वामी, उधर ते हर त्याए रहाओ। संसार गार बेकार सागर, पतत मोह मान अंध। बिकल माया संग तंद, कर गह प्रभ आप काढ़ो। राख लियो गोबिंद राय, अनाथ नाथ सनाथ संतन। कोट पाप विनाश मन दर्शने की प्यास, प्रभ पूर्ण गुणतास। कृपाल दयाल गोपाल नानक, हर रसना गुण गाए। कानड़ा महला पंजवां, वार वारो अनक डारो। सुख प्रे सुहाग पलक रात रहाओ। कनक मंदर पाठ सेज सखी, मोहे नाहे इन स्यों तात। मुक्त लाल अनक भोग, बिन नाम नानक हाथ। रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रे संग सुख बिहात। कानड़ा महला पंजवां, अहं तोरो मुख जोरो। गुर गुर करत मन लोरो, प्रे प्रीत प्यारो मोरो रहाओ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਆਂਗਨ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪੰਚ ਦੂਤਨ ਸਿਉ ਸੰਗ ਤੋਰੋ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨ ਊਂਦ ਕਮਲ ਬਿਗਸੋਰੋ ਛੁਟਕੀ ਹਉ ਮੈਂ ਸੋਰੋ ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹਿਰੋ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਮਨਾ ਹਰ ਜਾਪ ਜੋ ਸੰਤ ਬੇਦ ਕਹਿਤ ਪੰਥ ਗਾਖਰੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰਤਾਪ ਰਹਾਓ ਜੋ ਰਾਤੇ ਮਾਤੇ ਸੰਗ ਬੱਪਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੰਤਾਪ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰੈ ਜਿਸੈ ਉਧਾਰੋ ਆਪ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਮੋਹ ਪੈ ਭਰਮਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੋ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਜੀ ਸੰਤੋ ਜਾਤ ਜੀਓ ਬਲਿਹਾਰ ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਚ ਦੋਖੀ ਉਰਜ ਨਿਕਟ ਬਸਿਓ ਤਾਂਕੀ ਸਰਨ ਸਾਧੂਆ ਦੂਤ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰ ਰਹਾਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮਿਓ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਭਵ ਉਤਾਰ ਪਾਰ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਗਿਆਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣੇ ਆਏ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨੋ ਕਛੂ ਦਿਖਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਬਾਲੇ ਭੋਲੇ ਰਹਾਓ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਾਏ ਕਥੂ ਨਾ ਜਾਏ ਕਰੈ ਬਸਾਏ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਇਹ ਚੋਲੈ ਚਰਨ ਲੁਭਾਏ ਅੰਤ ਜਾਏ ਥਾਂ ਥਨ ਆਏ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਰਸਕ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕਰ ਮਿਲਨ ਦੁਰਾਈ ਪਰਮਿਤ ਰੂਪਾ ਗਾਮਾ ਗੋਚਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ ਰਹਾਓ ਕਹਿਣ ਭਵਨ ਨਾਹੀ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਅਨਕ ਉਕਤ ਚਤਰਾਈ ਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਕਿਉ ਪਾਵਰੇ ਤਉ ਮਿਲਿਓ ਜਉ ਕਿਰਪਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਈ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ

प्राण मन तन सर्वसो हर गुण दे सुख मोर ईत ऊत राम पूर्ण निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिरस्यो दुख कोर कनड़ा महला पंजवा। जन को प्रभ संगे असने हो साजनो तू मीत मेरा गृह तेरे सब के हो रहा हो। मान मांगो तान मांगो तन लक्ष्मी सुत देह मुकत जुगत भुगत पूर्ण परमानंद परम निधान। पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान। कानड़ा महला पंजवा करत करत चर्च चर्च अहंचरी करत करत चर्च चर्च चरचरी जोग ध्यान पेख ज्ञान फिरत फिरत तरत तरत तरचरी रहाओ। अहं अहं अह अवर मूढ़ मूढ़ मूढ़ बवरई जत जात जात जात सदा सदा सदा काल है। मान मान मान त्याग मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनोरे मूढ़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदियां महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जप मन राम नाम सुख पावै गो ज्यों ज्यों जपै त्वै सुख पावै सतगुर सेव समावै गो रहाओ। भगत जना की खिन खिन लोचा नाम जपत सुख पावै गो अनरस साध गए सब निकर बिन नामै किछ ना सुखावै गो। गुरमत हर हर मीठा लागा गुर मीठे बजन कढ़ावै गो सतगुर बाणी पुरख पुरखोत्म बाणी स्यो चितलावै गो। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या मन पीना निज

जानो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्पया रापो कोई मिले प्रभु मिलथे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभु तुमरे, जन नानक के प्रभु समरथ थे, कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम ते आवे हर जन, जिस वड भाग मथई, जै दरगह प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हमे मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम भज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तै राखे नाम साथ थई। जन तेरा जस गावे हर हर, प्रभ हर जप्यो जगंग नथी, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पाथर रख बुड़ थई, कल्याण महला चौथा। हमरी चितवनी हर प्रभ जान, और कोई निंद करे हर जन की, प्रभता का कहया एक तल नहीं मानै रहाओ। और सब त्याग सेवा कर अच्युत, जो सब ते ऊंच ठाकर भगवान है, हर सेवा ते काल जोहे ना सकै, चरणी आए पवै हर जन, जा कौ राख ले मेरा स्वामी, ता कौ समत दे पै कान, ता कौ कोई अपर ना सकै, जा की भगत मेरा प्रभ मान। हर के चोज विडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमख पछान, ता ते जन कौ आनंद भया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछतान। तुम हरदा ते समर्थ स्वामी, एक मांगो तुझ पासो हर दान, जन नानक कौ हर कृपा कर दीजै, सद बसै हृदय मुहे हर चरान, कल्याण महला चौथा। प्रभ की जय कृपा निदान, हम हर गुण गावेंगे, हम तुमरी करो नित्यास प्रभ, मोहे कब गल लावेंगे रहाओ। हम बारक मुक्त एआन पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पूल बिगार जगत पित पावेंगे, जो हर स्वामी तुम दे हो सोई हम पावेंगे, मोहे दूजी नाही ठौर जिस पै हम जावेंगे, जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत में लाए ज्योत रल जावेंगे। हरे आपे होए कृपाल आप लिव लावेंगे, जन नानक शरण द्वार हर लाज रखावेंगे, शक्का एक कल्याण पोपाली महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, दुख निवारण नारायण, सगल भगत जाचे सुख सागर, पावने दरन हर चिंता मणे रहाओ। दीन दयाल जगदीश दमोदर, हर अंतर जामी गोबिंदे, ते निरपो जिन श्री राम ते आया, गुरमत मुरार हर मुकंदे, जगदीशर चरण सरन जो आए, ते जन पावनित पार परे, भक्त जना की पैज हर राखे, जन नानक आप हर कृपा करे। राग कल्याण महला पंजवा, कर पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद। हमारे एह कृपा की जय, आलम करंद चरण कमल स्यो, मन फेर फेर दी जय रहाओ। आन जला स्यो काज ना कछुऐ, हर बूंद चातरक कौ दी जय, बिन मिलबे नाही संतोखा, पेख दर्शन नानक जी जय। कल्याण महला पंजवा, जाचक नाम जाचै जाचै, सर्वतार सर्व के नायक, सुख समूह के दाते रहाओ। केती केती मांगन मांगे, पावनिया सो पाईऐ, सफल सफल सफल दर्शरे, परस परस गुण गाईऐ, नानक तत तत स्यो मिलीऐ, हीरे हीर बिधाईऐ। कल्याण महला पंजवा,
मेरे लालन की शोभा, साध नवतन मन रंगी शोभा रहाओ। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, भगत दान जस मंगी, जोग ज्ञान ध्यान सेख नागै, सगल जपै तिरंगी। कहो नानक संतन बलिहार है, जो प्रभ के सद संगी। कल्याण महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे मान हर हर मान। नैन बैन श्रवण सुनिए, अंग अंगे सुख प्राण रहाओ। ईत योत दह दिस रवेओ, मेरत ने समान। जत कथा तत पेखिए, हर पुरख पत प्रधान। साध संग भ्रम पै मिटे, कथे नानक ब्रह्म ज्ञान। कल्याण महला पंजवा, गुण नाद तोनिया आनंद बेद, कथत सुनत मुन जना, मिल संत मंडली रहाओ। ज्ञान ध्यान मान दान, मन रसक रसन नाम जपत, तै पाप खंडली। जोग जुगत ज्ञान भुगत, सुरत शब्द तत् बेते, जप तप अखंडली। ओत पोत मिल जोत नानक, कशु दुख ना डंडली। कल्याण महला पंजवा, कौन बेता की कहां करो, तरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया, अजर पद कैसे जरो रहाओ। बिशन महेश सिद्ध मुन इंद्रा, कै दर्शन परो, काहू पै राज काहू पै सुरगा। कोट मदे मुक्त कहो, कहो नानक नाम रस पाई है, साधु चरण गहो। कल्याण महला पंजवा, प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे, गर्भ जोन कल काल जाल, दुख विनाशन हर रखे रहाओ। नाम तारी शरण तेरी, प्रभ दयाल टेक मेरी। अनाथ दीन आसवंत, नाम स्वामी मनै मंत। तुझ बिना प्रभ किशु ना जानू, सर्व जुग मैं तुम पछानू। हर मन बसे निस बसरो, गोबिंद नानक आसरो। कल्याण महला पंजवा, मंत्र जापिए भगवान, गुर पूरे सो प्रसन्न पए, सदा सुख कल्याण रहाओ। सर्व कार्य सिद्ध पए, गाए गुण गोपाल, मिर साध संगत प्रभु सिमरे, नाठिया दुखकाल। कर कृपा प्रभ मेरे आ, करो दिन रहन सेव। नानक दास शरणागति, हर पुरख पूर्ण देव। कल्याण महला पंजवा, प्रभ मेरा अंतर जामी जान, कर कृपा पूर्ण परमेसर, निहचल सच शब्द निशान रहाओ। हर बिन्यान ना कोई समर्थ, तेरी आस तेरा मंतान। सर्व घटा के दाते स्वामी, देह सो पहरन खान। सुरत मत चतराई शोभा, रूप रंग तन मान। सर्व सुख आनंद नानक, जप राम नाम कल्याण। कल्याण महला पंजवा, हर चरण सरन कल्याण करन, प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ। साध संग जपन संग, जमकाल तिस ना खावनो। मुक्त जुगत अनक सुख, हर भगत लवे ना लावनो। प्रभ दर्श लुब्ध दास नानक, बहुड़ जोन ना तावनो। कल्याण महला चौथा, अष्टपदिया एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। रामा रम रामो सुन मन पीजै, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजै रहाओ। काष्ट मैं ज्यो है बैसंतर, मत संजम काढ़ कढ़ीजै। राम नाम है जोत सबाई, तत गुरमत काढ़ लई जै। नौ दरवाज नवे दर फीके, रस अमृत दसवें चुई जै। कृपा कृपा कृपा कर प्यारे, गुरसबदी हर रस पीजै। काया नगर नगर है नीको, विच सबदा हर रस की जै। रतन लाल अमोल अमोलक, सतगुर सेवा ली जै। सतगुर अगम अगम है ठाकर, पर सागर भगत करी जै। कृपा कृपा कर दीन हम सारंग, एक बूंद नाम मुख दी जै।

फुन नीच करत है, नीच करै सुल्तान, जिन्नी जान सो जानिया, जग ते पूरे परवान। ता कौ समझावन जाइए, जे को पूला होई, आपे खेल करे सब करता है, साबू जै कोई। नाव प्रभाता सब त्याई है, छोडो दुनी परीता, प्रणवत नानक दासन दासा, जग हारिया तिन जीता। प्रभाती महला पहला, मन माया मन ताया, मन पंखी आकाश, तस्कर शब्द निवारिया, नगर उठा सा भास, जा तू राख राख लै सब तो हो वैरास। ऐसा नाम रतन निध मेरा, गुरमत देहे लगो पग तेरा रहाओ। मन जोगी मन पोगिया, मन मूर्ख गावार, मन दाता मन मंगता, मन सिर गुर करतार। पंचमार सुख पाया, ऐसा ब्रह्म विचार, घट घट एक वखाणी है, कहो ना देखिया जाए। खोटो पुठो राली है, बिना मैं पत जाए, जा तू मिले ता मिल रहा, जा तेरी होए रजाए। जात जन्म ने पूछिए, सच कर लिहो बताए।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागणहारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझे अंधना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर करमी।

आप तरै सब कुटुंब तराई है, रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवां। सिमरत नाम किलबिक सब काटे, धर्म राय के कागर फाटे। साध संगत मिलहर रस पाया, पार ब्रह्म रिदमाए समाया। राम रमत हर हर सुख पाया, तेरे दास चरण सरनाया। रहाओ चूका गौण मिटिया अंधियार, गुर दिखलाया मुग द्वार। हर प्रेम भगत मन तन सद राता, प्रभु जनाया तब ही जाता। घट घट यंत्र रव्या सोए, तिस्मिन बीजो नाही कोए। बेर बैर विरोध छेदे पै परमा, प्रभ पुन आत्म है कीने धर्मा। महातरंग ते कांडा लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा। जप तप संजम नाम संभालिया, अपने ठाकर नजर निहालिया। मंगल सुख कल्याण तिथाई, जय सेवक गोपाल गुसाई। प्रभ सो प्रसन्न पय गोपाल, जन्म जन्म के मिटे बेताल। होम जग उर्दता पूजा, कोट तीर्थ इशनान करी जा। चरण कमल निमख हृदय तारे, गोविंद जपत सब कार्य सारे। ऊचे ते ऊचा प्रभ थान, हर जन पावे सही ध्यान। दास दास की बांछो तूर, सर्व कला प्रीतम भरपूर। मात पिता हर प्रीतम नेरा, मीत साजन परवासा तेरा। कर गए लीने अपने दास, जब जीवे नानक गुणतास। विभास प्रभाती बाणी, भगत कबीर जी की एक ओंकार। सदगुर प्रसाद मरण जीवन की शंका नासी, अपन रंग सहज परगासी। प्रगटी ज्योत मिटिया अंधियारा, राम रतन पाया करत बिचारा। रहाओ जह आनंद दुख दूर पयाना, मन मानक लिव तत् लुकाना। जो किश होवा सो तेरा पाणा, जो इव बूझै सो सही समाणा। कहत कबीर किल बिख गए खीणा, मन भया जग जीवन लीणा। प्रभाती अल्लाह एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किस केरा। हिंदू मूर्त नाम निवासी, दोह मह तत ना हेरा। अल्लाह राम जीवो तेरे नाई, तू कर मै रम्मत साई। रहाओ दखन देश हरी का बासा, पच्छम अल्लाह मुकामा। दिल मैं खोज दिलै दिल खोजो, एही ठौर मुकामा। ब्राह्मण ग्यास करै चौबीसा, काजी मेहर मजाना। ग्यारह मास पास कह राखै, कै महे निधाना। कहां ओडी से मज्जन किया, क्या मसीत सिर नाए। दिल में कपट निवाज गुजारै, क्या हज काबै जाए। एते औरत मरदा साजे, ए सब रूप तुम्हारे। कबीर पूंगरा राम अल्लाह का, सब गुर पीर हमारे। कहत कबीर सुनो नर नर वै, परो एक की सरना। केवल नाम जपो रे प्राणी, तभी निश्चय तरना। प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। लोगा परम ना पूलो पाई, खालक खालक खालक मैं खालक। पूर रहो सर्वठाई। रहाओ माटी एक अनेक पांत कर, साजी साजन हार। ना कश पोच माटी के पांडे, ना कश पोच कुंभार। सब मैं सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कश होई। हुक्म पछाने सो एको जाने, बंदा कही है सोई। अल्लाह अलख न जाई लखया, गुर गुर दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डीठा। प्रभाती वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना बिचारै। जो सब मैं एक खुदाए कहत हूं, तो क्यों मुर्गी मारै। मुल्ला कहो न्याओ खुदाई, तेरे मन का भरम ना जाई। रहाओ पकर जियो अन्या देह बिनासी, माटी को बिस्मिल किया।
ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਤ ਲਾਗੀ ਕਉ ਲਾਲ ਕਿਆ ਕੀਆ, ਕਿਆ ਉਜੂ ਪਾਕ ਕੀਆ ਮੋਹ ਧੋਇਆ, ਕਿਆ ਮਸੀਤ ਸਿਰ ਨਾਇਆ, ਜੋ ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਪਟ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਾ, ਕਿਆ ਹਜ ਕਾ ਬਹਿ ਜਾਇਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਪਾਕ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਸੂਝਿਆ, ਤਿਸ ਕਾ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਪਿਸਤੇ ਚੂਕਾ ਦੋਜਕ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਸੁਣ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ, ਅਧਪਤ ਆਦਿ ਸਮਾਈ, ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲਾਗ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ, ਲੇਹੋ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਭਾਈ, ਠਾਂਡਾ ਬਰਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ, ਰਹਾਉ ਤਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀਆ ਬਾਤੀ, ਦੀਪਕ ਦੇਹ ਉਜਿਆਰਾ, ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ, ਬੂਜੈ ਬੂਜਨਹਾਰਾ, ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ

प्रभाती बाणी भगत नामदेव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन की बिरथा मन ही जानै कह बूझ लिया गै कहिया, अंतर जामी राम रवाई मैं डर कैसे चहिया। बेदियले गोपाल गोसाई मेरा प्रभ रवया सर बेठाई रहाओ। मन है हाट मन है पाट मन है पासारी, मन है बस है नाना पेदी परमत है संसारी। गुर कै शब्द हो मन राता दुबदा सह समाणी, सबो हुक्म हुक्म है आपे निरपौ समत विचारी। जो जन जान भजै पुरखोत्म ताची अवगत बाणी, नामा कह जग जीवन पाया हृदय लख बिडाणी। प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ता का अंत न जानिया, सर्ब निरंतर राम रया रव ऐसा रूप बखानिया। गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाओ। बावन बिखू बन बिखे बासते सुख लागला, सर्बे आद परमलाद काहट चंदन पैलै। तुमचे पारस हमचे लोहा संगे कंचन पैला, तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला। प्रभाती अकुल पुरख एक चलत उपाया, कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया। जी की जोत न जाने कोई, तै मैं किया सो मालूम होई रहाओ। ज्यों प्रगासिया माटी कुंभे ओ आप ही करता बीठल दे ओ। जी का बंधन कर्म व्यापै जो किश किया सो आपै आपै। प्रणवत नाम देओ इहो जियो चितवै सो लहै, अमर होए सद आकुल रहै। प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन चंदन मस्तक पाती हृदय अंतर कर तलकाती, ठग दिष्ट बग्गा लिव लागा देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद च राम क्रूर दिष्ट रता निस्बादंग रहाओ। नित प्रत इशनान श्रीरंग दोय धोती कर्म मुख खीरंग, हृदय श्री संध्यानी पर दर्भ हरन की बानी। सिल पूजसो चक्र गणेशं निस जागत निस जागस भगत परवेशं, पग नाचस चित अकर्मं एलम पट नाच धर्मं। मृग आसन तुलसी माला कर उज्जल तिलक कपाला, हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं रे लंपट कृष्ण अपाखं। जिन आत्म तत् न चीनिया सब फोगट धर्म अबीनिया। कहो बेणी गुरमुख त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग जय जयवंती महला नवा, राम सिमरो एह तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ। सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान, बारू की पीत जैसे बसदा को राज है। नानक जन कहत बात बिनस जह है तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। जय जावंती महला नावा, राम भज जन्म सिरात है। कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार उरे समगात है रहाओ। सगल परम डार देहे गोविंद को नाम लेहे, अंत बार संग तेरा यह एक जात है। बिखिया बिख ज्यो बिसार प्रभ को जस ही ये तार, नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है। जय जावंती महला नावा, रे मन कौन गत होए है तेरी,
ਇਹ ਜਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੋ ਤਉ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਓ ਕਾਨ ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਅਤ ਲੁਭਾਨ ਮਤ ਨਾਨ ਫੇਰੀ ਰਹਾਉ ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮ ਲੀਨ ਸਿਮਰਨ ਨੈ ਨਿਮਖ ਕੀਨ ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਭਇਓ ਦੀਨ ਪਗਹੁ ਪਰੀ ਬੇਰੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਗ ਪਸਾਰ ਸਿਮਰਤ ਨਹਿ ਕਿਉ ਮੁਰਾਰ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੇਰੀ ਜੈ ਜੈ ਬੰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ ਨਿਸਦਿਨ ਸੁਣ ਕੈ ਪੁਰਾਨ ਸਮਝਤ ਨੈ ਰੇ ਅਜਾਨ ਕਾਲ ਤਉ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਕਹਾਂ ਜਹਿ ਪਾਜ ਰੇ ਰਹਾਓ ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨ

जन्म दारिद्रं महाबिख्यादं मिटंत सगल समरंत हर नाम नानक। जैसे पावक काष्ट पस्मं करोत अंधकार सिमृत प्रकाशं गुणर मंत यज्ञ खंडन है। हरिद बसंत पै पीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है। जन्म मरण रहंत स्रोता सुख समूह अमोग दर्शन है। शरण जोगं संत प्रे नानक सो भगवान खेमं करोत। पाशं करोत अग्रणी वै निरासं आस पूर्ण निर्तन भयं तन मंत है। रोगियं रोग खंडन है। भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है। पार ब्रह्म पुरख दा तार है। नानक गुर सेवा किंग ना लभ्या ते अतरंग तरंग तारण है। निर्तनं तन नाम नर हर है। अनाथ नाथ गोविंद है। बलहीन बल केशव है। सर्वभूत दयाल अच्युत दीन बांधवदा मोदर है। सर्वग पूर्ण पुरख भगवान है। भगत वच्छल करनामय है। घट घट बसंत वासदेव है। पार ब्रह्म परमेश्वर है। जाचंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नह बिसरंत नारायण है। नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम परखोत्तमं तव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं। परण पोखण करंत जिया विश्राम साधन देवंत दानं सृजंत रत्न जन्म चतर चेतन वर्तंत सुख आनंद प्रसाद सिमरंत नानक हर हर हरे। अनित रचना निर्मोहते दानं पराबूर बेण पुचंते महीपते विपरीत बुद्धियंग मारत लोकै नानक चिरंकाल दुख भोगते। बिरथा अनुग्रं गोविंद जस सिमरन।

अमृत नाम नारायण नानक पीवतंग संतना तृपते, सहनशील संतंग सम्मित्रस दुर्जन नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते। तिरस्कार नह पवंत मान भंगन शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन, गोविंद नाम जपंत मिल साध संग नानक से प्राणी सुख बसन, सैना साध समूह सूरा जितंग सन्ना हम तन्य मृता आव दे गुण गोविंद रमणंग ओट गुर शब्द कर चरमण, आरूढ़ ते अश्वरथ नाग बुजंते प्रमार ग विचरते निरपयंग सत्र सैना तायंते गोपाल कीर्तन, जित ते विश्व संसार नानक वस्यंग क्रोध पै तस्कर, मृग तृष्णा गंधर्व नगरंग द्रुम छाया रच दुर्मत ततः कुटांब मोह मिथ्या स्मरंत नानक राम राम नाम, नच विद्या निदान निगमंग नच गुणग नाम कीर्तन, नच रागरतन कंठंग नह चंचल चतर चतर, पाग उद्यम लभद्यंग माया नानक सा संग खल पंडित, कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम तारणी जी पणिजो उत्तम सलोक उदरनंग नैन नंदनी, गुरमंत्र हीन अस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन, कुकर सुकर गर्भ दय काक सर्पन तुल खल चरणार बिंद भजनंग हृदयंग नाम धारण, कीर्तनंग सा संगे नानक नह दृष्टांत जमदूतन, नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन, नच दुर्लभंग भोजनंग व्यंजनंग नच दुर्लभंग स्वच्छ अंबर, नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बंता बिलास, नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग नच दुर्लभंग चतर चंचल, दुर्लभंग एक भगवान नाम नानक लभद्यंग सा संग कृपा प्रभंग, जत कत तत दृष्टंग स्वर्ग मर्त पयाल लोक सर्वत्र रमणंग गोविंद नानक लेप शेप ना लिप्या ते, बिखिया पयंत अमृतंग दृष्टा सखा स्वजन, दुखंग पयंत सुखियंग पह पी पंत निर्भय, थान बिहून विश्राम नामंग नानक कृपाल हर हर गुर, सर्वशील ममंग सीलंग सर्व पावन मम पावन है,

ਸੀਤ ਰੂਪੇਣ ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰਗ ਸਾ ਸਵਜਨ ਮੰਤਰੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰਗ ਸਰਬੱਤਰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੰਗ ਸਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣ ਦਯਾਲੰਗ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਆ ਪੰਚ ਦੁੱਖ ਬਵਰਜਿਤ ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤ ਉਪਦੇਸੰ ਸਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨੈ ਸਰੋਤ ਸ੍ਰਵਣੰ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਣਕੈ ਖਟ ਲਖਣ ਪੂਰਨੰ ਪੁਰਖੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨ ਅਜਾ ਪੋਗੰਤ ਕੰਦ ਮੂਲੰ ਬਸੰਤੇ ਸਮੀਪ ਕੇਹਰੈ ਤਤਰ ਗਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਵਿਆਪਤੇ ਛਲੰ ਛਿਦਰੰ ਕੋਟ ਬਿਘਨੰ ਅਪਰਾਧੰ ਕਿਲ ਬਖਮਲੰ ਪਰਮ ਮੋਹੰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨੰ ਮਦੰ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਤੰ ਮ੍ਰਿਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮੰਤ ਨਰਕੈ ਅਨਕ ਉਪਾਵੰ ਨਾ ਸਿਧਿਅਤੇ ਨਿਰਮਲੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੈ ਜਪੰਤ ਨਾਨਕ ਗੋਪਾਲ ਨਾਮੰ ਅਰਮੰਤ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੈ ਤਰਨ ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ ਰਮਣਸ਼ੀਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਦਾਨ ਦੇਤ ਪ੍ਰਪੂਰਨ ਹੈ ਨਿਰਾਸ ਆਸ ਕਰਨੰ ਸਗਲ ਅਰਥ ਆਲੇ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਜਾਚੰਤ ਜਾਚਕੈ ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਸੁਗਮੰ ਮਹਾਂਦੂਖ ਸਰਬ ਸੂਖਣ ਹੈ ਦੁਰਬਚਨ ਭੇਦ ਭਰਮੰ ਸਾਕਤ ਫਸਨੰਤ ਸੁਰਜਨ ਅਸਥਤੰ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਪੈ ਖੀਣੰਤ ਨਿਰਭਵੈ ਤੈ ਅਟਵੀਅੰ ਮਹਾਨਗਰ ਵਾਸੰ ਧਰਮ ਲਖਣ ਪ੍ਰਮਯਾ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਮਣੰ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਦਯਾਲ ਚਰਣੰ ਹੇ ਅਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ ਅਤ ਬਲ ਨਾ ਬੋ ਮਰਦਨ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇ ਮਾਨੁਖਿਅੰ ਪਸ ਪੰਖੀ ਬੇਮੋਹਨ ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰੰ ਨਮਸਕਾਰੰ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪ੍ਰਮਾਵਣ ਚਿਤ ਹਰਣੰ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮਿਅੰ ਜਪ ਤਪਸੀਲ ਵਿਧਾਰਣ ਅਲਪ ਸੁਖ ਅਵਿਤ ਚੰਚਲ ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣ ਤਉ ਭੈ ਬਿਮੁੰਚਤ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਓਟ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣ ਹੇ ਕਲ ਮੂਲ ਕਰੋਧੰ ਕਦੰਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਪਰਜਤੇ ਬਿਖਯੰਤ ਜੀਵੰ ਵਸਿਅੰ ਕਰੋਤ ਨਿਰਤਿਅੰ ਕਰੋਤ ਜਥਾ ਮਰਕਟੈ ਅਨਕ ਸਾਸਨ ਤਾੜੰਤ ਜਮ ਦੂਤੈ ਤਵ ਸੰਗੇ ਅਦਮੰ ਨਰੈ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀ ਰਖਿਆ ਕਰੋਤ ਹੇ ਲੋਬਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰੈ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲਤੇ ਤਾਵੰਤ ਜੀਆ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲਤੇ ਨਚ ਮਿਤਰੰ ਨਚ ਇਸ਼ਟੰ ਨਚ ਬਾਂਧਵ ਨਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲੱਜਿਆ ਅਕਰਣ ਕਰੋਤ ਅਖਾਦ ਖਾਦਿਅੰ ਅਸਾਜਿੰ ਸਾਜ ਸਮਝਿਆ ਤ੍ਰਾਹੇ ਤ੍ਰਾਹੇ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ ਵਿਗਿਆਪਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਰ ਹਰ ਹੈ ਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰ ਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰ ਅਹੰਕਾਰੰ ਪਾਪਾਤਮਾ ਮਿਤਰੰ ਤਜੰਤ ਸਤਰੰ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਵਿਸਤੀਰਨ ਆਵੰਤ ਜਾਵੰਤ ਥਕੰਤ ਜੀਆ ਦੁਖ ਸੁਖ ਬੋ ਬਹੁਗਣ ਪਰਮ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਰਮਣੰ ਮਹਾਂਵਿਕਟ ਅਸਾਧ ਰੋਗਣ ਵੈਦਿਅੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੋ ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਹਰਣ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹਰੋ ਹੇ ਸਰਨ ਯੋਗ ਦਇਆਲ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਮਾਇਆ ਕਰੋ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਖੀਣ ਸਮਾਏ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਦਾਮੋਦਰ ਮਹਾਦਵੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਣੰ ਰਮਣੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਤਰਣੰ ਨਾਨਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪੈ ਦੁੱਤਰੈ ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰ ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੈ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਤਨ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰੈ ਸਰਬ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਪੈ ਦੁੱਖ ਵਿਨਾਸ਼ਨੈ ਭਗਤ ਵਛਲਾ ਨਾਥ ਨਾਥੇ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖਾ ਚੁੱਤੈ ਜੇਨ ਕਲਾ ਧਾਰਿਓ ਆਕਾਸੰ ਬੈ ਸੰਤਰੰ ਕਾਸ਼ਟ ਬੇਸ਼ਟੰ ਜੇਨ ਕਲਾ ਸ ਸੂਰ ਨਖਿਆਤ੍ਰ ਜੋਤਿਅੰ ਸਾਸੰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਣੰ ਜੇਨ ਕਲਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਪ੍ਰਤਪਾਲੰ ਨੈਛ ਜੰਤ ਜਠ ਰੋਗਣੈ
तेन कला अस्थम्बं सरोवरं नानक नहश जंत तरंग तोयेण गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणं सर्वत्र जीवन लब्ध्यं संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भक्तन मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कै सागरं लंघंत पिंगं तम प्रगास अंध कै साध संगेण सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे तिलकहीणं जथा विपरा अमरहीणं जथा राजन आवदहीणं जथा सूरा नानक धर्महीणं तथा वैष्णव ना शंखं ना चक्रं ना गदा ना सियामं आश्चर्य रूपं अरहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद बसंत साध हृदयं अचत बुझंत नानक वडभागी उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खरै बिखम स्थान मन मोह मदरं महा असाध पंच तस्कर हीत मोह पै परम परमनं अहु फांस दीखण कठन पावक तो असाध कोरं अगम तीर नै लंगन पज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरन उदरन कृपा कृपा करंत गोबिंद गोपाल सगले रोग खंडन सा संगेन गुण रमत नानक सरन पूर्ण परमेश्वर श्यामलंग मदर मानुखयंग हृदयंग भूम वैरण निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग समंत स्वजन अचेत मूडा ना जानंत कटंत सासा नित प्रत्यक्ष जंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते हरिचंत पुरख है कुटंब लीला अनित आसा विख्या बिनोद परमंत परमंत जन्म हार्यो शरण नानक करुणामय हे जहबे हे रसगे मदर प्रिया त्वयं सत हतंग परम बादंग अवर्त एथ सुध अक्षरण गोविंद मोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन मतंग बलवंत बलात्कार चरण कमल नह पजंत तरण समान त्रिग जन्म न हे पपील का ग्रष्टे गोविंद सिमरन तोयंग धने नानक अनक बार नमो नम त्रिणंगता मेरंग सहकंता हरियंग बूडंगता तरियंग ऊनंगता परियंग अंधकार कोड सूर ओजारंग बिनवंत नानक हर गुर दयारंग ब्रह्मण संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण आत्मरतंग संसार गहं ते नर नानक ने फल पर दर्भ हिरणं बहु विघ्न करणं उचरणं सर्वजी कै लौ लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म करत सासु करै मते समेव चरणं उदरणं पै दुतरै अनेक पातक हरणं नानक साध संगम ना संशय महला पंजवां गाथा एको अंकार सतगुर प्रसाद कर्पूर पोहप सुगंधा परस मानुख देहं मलीणं मज्जा रुद्र दुर्गंधा नानक अथगर बेण अज्ञानन परमाणु पर जंत आकाश दीप लो से खंडन गशेण नैन पारेण नानक बिना साधु ना सिद्ध्यते जानो सत होवंतो मरणो दृष्टेन मिथ्या कीर्त साथ चलंथो पढ़ंत नानक साध संगेण माया चित परमेण इष्ट मित्रेख बांधव लब्ध्यंग साध संगेण नानक सोख्य स्थानं गोपाल भजनं लब्ध्यंग साध संगेण नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैलागर संगेण निम बिरख से चंदन निकट बसंतो बांसो नानक अहं बुद्ध ना बोहते गाथा गुम्फ गोपाल कथं मथंग मान मर्दन हतंग पंच सतरेण नानक हर बाणे परहारण
बचन साध सुख पंथा लहंता बड़ कर्मण अरहंता जन्म मरणेन रमणंग नानक हर कीर्तन। पत्र पुर जेन चढ़ियंग नह जड़ियंग पेड़ संपता नाम बेहूण बिखमता नानक बहंत जोन बसरो रैणी। पावनी साध संगेन लबंतंग बड़ पागण हर नाम गुण रमणंग नानक संसार सागर ने व्यापण। गाथा गूढ़ अपारंग समझणंग बिरला जन संसार काम तजणंग नानक गोबिंद रमणंग साध संग में। सुमंत्र साध बचना कोट दोख बिनासन हर चरण कमल ध्यान नानक कोल समूह उदाहरण। सुंदर मंदर सैन जेण मद हर कीर्तन मुक्ते रमण गोबिंद नानक लभद्यंग बड़ भागण। हर लभदो मित्र सुमितो बिदारण कदे ना चित्तो जा का अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो। अबज संग मिटंत सत पुत्र है सिमरता बरदै गुरमंत्रण। प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण। मरणंग बिसरणंग गोबिंद जीवणंग हर नाम त्यावण। लबणंग साध संगेण नानक हर पूर्व लिखण। दसन बिहून पुयंगंग मंत्रंग गारड़ी निवारंग व्याद्योपण संतंग नानक लब्ध कर्मण। जाथ कथ रमणंग सरणंग सर्वत्र जियण तथ लगणंग प्रेम नानक प्रसादंग गुरदर्शन। चरणार बिंद मन विद्यंग सिद्ध्यंग सर्व कुशलण। गाथा गावंत नानक पब्यंग परा पूर्वण। शुभ बचन रमणंग गवणंग साध संगेण उदरण संसार सागरंग नानक पुनरप जन्म न लभ्या ते। वेद पुराण शास्त्र विचारंग एकंकार नाम उरतारंग कुल समूह सगले उदारंग वडपागी नानक को तारंग। सिमरणंग गोबिंद नामंग उदरणंग कुल समूहण। लब्ध्यंग साध संगेण नानक वडभागी पेटंत दर्शन। सर्व दोख परंग त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतण। लब्धेण साध संगेण नानक मस्तक लिखण। होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सत्म जानो नानक प्रीत कारणं। सुखैण बैन रत्नं रचनं कुसुंबरंगण। रोग सोग बेयोगं नानक सुख ना सुपन। फुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हाथ कलम या गम मस्तक लेखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। उसत कहण ना जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। संत सभा मैं बैस के कीर्त मैं कहा अर्पी सब सिंगार एहो जियो सब देवा। आस प्यासी सेज सोकंत विशाई हर हां मस्तक होवे भाग ता साजन पाई है। सखी काजल हार तंबोल सब है के साजिया सोले किए सिंगार के अंजन पाजिया। जे करे आवे कंत ता सब किश पाई है हर हां कंत है बाज सिंगार सब बिरथा जाई है। जिस घर वसिया कंत सावड़ पागणे तिस बनिया हब सिंगार साई सुहागणे। हौ सुती होया चिंत मन आस पुराइया हर हां जा कर आया कंत ता सब किश पाईया पाईया। आस आईती आस के आस पुराइया सतगुर पय दयाल ता पूरा पाईया। मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हर हां सतगुर पय दयाल ता मन ठहराया।
कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्तरे हो संसार सतगुरु तराया मिटाय आवा गौण जा पूरा पाया हर हाय अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया मेरा हाथ पद्म आंगन सुख बसना सखी मोरे कंठर तन पेख दुख नसना बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हारिद सिद्ध नव निद बसै जिस सदा कर परतरे रावण जाहे सेई ताला जिया नित प्रत हिरै पर दर्ब शिदर कद ढाकी हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पय पुनीत पार ब्रह्म विचारई ऊपर बनै आकाश तलै तर सोहती दह दिस चमकै बीजल मुक जोहती खोजत फिरो बदेस पियो कत पाईऐ हर हां जे मस्तक होवै भाग तां दर्श समाईऐ डिठे सबे थाम नहीं तुद जेहया बदो पुरख बिधातै तां तू सोहया वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर हर हां नानक कसमल जाहे नाया रामदास सर चात्रक चित सुचित सो साजन चाहिए जिस संग लागे प्राण तिसै को वाहिए बन बन फिरते उदास बूंद जल कारणे हर हां त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलिहारणे मित का चेता नूप मराम ना जानिए गाहक गुनिया पार सोता तत पिछानी है चित्तै चित समाए ता होवै रंग कना हर हां चंचल चोरै मार ता पावै सच तना सुपने उबी पई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख बराइत पेख मन बंचला खोजो ताके चरण कहो कत पाई है हर हां सोई जतन बताए सखी प्रयो पाई है नैन ना देखे साध से नैन बिहालिया करन ना सुन ही नाद करन मुंद कालिया रसना जपे नाना तिल तिल कर कटी है हर हां जब बिसरे गोबिंद राए दिनों दिन कटी है पंकज फाथे पंक महामद गुंफिया अंग संग उर जाए बिसरते सुंफिया है कू ऐसा मीत जे तोरे बिखम गांठ नानक एक श्री तरनाथ जे टूटे ले सांठ तावो दसा अनेक प्रेम प्रभ कारणे पंच सतावै दूत कमन बिद मारणे तीखण बाण चलाए नाम प्रभ त्याई है हर हां महा बिखादी कहात पूर्ण गुर पाई है सदगुर की नीदात मूल नान खुट्टई खावो पुंचो सब गुरमुख छुट्टई अमृत नाम निदान दिता तो सहार नानक सदा अराद कदे ना जाहे मर जिथे जाए भगत सो थान सुहावना सगले होए सुख हर नाम ते आवना जी करण जयकार निंदक मोए पच साजन मन आनंद नानक नाम जप पावन पदत पुनीत कतै नहीं सेवीऐ झूठै रंग खुआर कहां लग खेवीऐ हर चंदौरी पेख काहे सुख मानिया हर हां हां बलिहारी तिन जे दर गै जानिया कीने कर्म अनेक गवार बेकार कहन महा दुर्गंध तवास सठ का शार तन फिर तो गर्भ गुबार मरण जानई हर हां हर चंदौरी पेख काहे सच मानई जिसकी पूजै औद तिसै कौन राखई वैदक अनप्यो पाव कहां लो पाखई एको चेत गवार काज तेरे आवई हर हां बिन्ना मैं तनशार बिरथा सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पीजई
मिल मिल खावे संत सगल कौ दीजई, जिसे प्राप्त होए तिसे ही पावणे, हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावणे। वैदा संदा संग इकट्ठा होया, औखदे आए रास विच आप खलोया, जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसरिया, हर हां दुख रोग सब पाप तंते खिसरिया। चौ बोले महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, समन जो इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट, प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदयो बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम, मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर शाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए, जाप तप संज महरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब, मूसन मर्म ना जान नहीं मर्त हिरत संसार, प्रेम परम ना बेदेओ उर्जो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल, जां को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहूं जाहे। लख काटी ऊंचो कनो चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल, कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मराम स्यों खंड खंड कर हार, मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। सलोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कबीर मेरी सिमरनी रसनाई उपर राम, आज जुगादि सगल भगत ताको सुख विश्राम, कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार, कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो, कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिनमन नाही नाओ, कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखों तत सोए, कबीर जा दिन हो मुआ पाछे पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद, कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए, कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश, कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सब को कह बुरो न माने कोए, कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठतावते से जान मारे भगवंत, कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ो टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास, कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए, कबीर दीन गवाया दुनि स्यो दुनि ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ,
कबीर जय जय हो फिरे ओ कौतक ठा उठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली, पाठक सती गाओ आग लगो तेह तौल हारो, जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है, जो अपने ग्रह जाए। रोबो सागत बापरे, जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है, जैसी लक्षण की खान। कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी, पवन वह हिवतार। जिन बिलोया तिन खाया, अवर बिलो बनहार। कबीर माया चोरटी, मुसमुस लावे हाट। एक कबीरा नाम सह जिनकीनी बारे बाट। कबीर सुख ना एह जोग, करे जो बहुत है मीत। जो चित राखे एक स्यों, ते सुख पावे नीत। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। राम पदार्थ पाए कै कबीरा, गांठ ना खोल। नहीं पट नहीं पारखू, नहीं गाक नहीं मोल। कबीर तास्यों प्रीत कर, जा कोठा कर राम। पंडित राजे पूपति, आवे कौने काम। कबीर प्रीत एक स्यों किए, आन दुबदा जाए। पावे लांबे केस कर, पावे कर रमुडाए। कबीर जा काजल की कोठरी, अंध परे तस्माहे। हम बलिहारी तिन कहो, पैस जो निक सजाहे। कबीर यहो तन जाएगा, सको ता लेहो बहोर। नांगे पावो ते गए, जिनके लाख करोर। कबीर यहो तन जाएगा, कवने मार्ग लाए। कै संगत कर साध की, कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पीना जानिया कोए। ऐसे मरने जो मरे, बहुर न मरना होए। कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए न बारे बार। ज्यो बन फल पाके पोए, ग्रह बौर न लागे डार। कबीरा तुही कबीर, तू तेरो नाओ कबीर। आराम रतन तब पाई है, जो पहले तजै शरीर। कबीर चंख ना चंखी है, तुमरो कहो ना होए। कर्म करीम जो कर रहे, बेट ना साके कोए। कबीर कसौटी राम की, झूठा टके ना कोए। राम कसौटी सोस है, जो मर जीवा होए। कबीर उज्जल पैर कापरे, पान सुपारी खाहे। एक सहर के नाम बिन, बांधे जमपुर जाहे। कबीर बेड़ा जर जरा, फूटे शेक हजार। हरुए हरुए तर गए, डूबे जिन सरपार। कबीर हार्ड जर

भगत ना छाड़ो राम की पावे निंदो लोग। कबीर लोके निंदे बपड़ा जे मन नाही ज्ञान, राम कबीरा रव रहे अवर तजे सब काम। कबीर परदेसी कै कागर चहु दिस लागी आग, खिंथा जल कोयला पई तांगे आंच ना लाग। कबीर खिंथा जल कोयला पई खापर फूट मफूट, जोगी बपड़ा खेले ओ आसन रही बेपूत। कबीर थोरे जल माछली चीवर में लियो जाल, एह टोग ने ना छूट सै फिर कर समुंद समाल। कबीर समुंद ना

होए सो होए। कबीर बैसनो की कुकर भली, सागत की बुरी माए, ओह नित सुने हर नाम जस, ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला, एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर कर, पीवै निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए, इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। कबीर हर दी पियारी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिलै दोनों बरन गवाए। कबीर हर दी पी रतन हरै चून चहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात बरन कुल जाए। कबीर मुक्त द्वार।

ओ नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोह मिले ओ तेन लिया अंचल लाए। कबीर वैद कहे हाँ ही भला दारू मेरे वस, ए तो बस्त गोपाल की जब पावे लेखस। कबीर नौबत अपनी दिन दस लिहो बजाए, नदी नाव संजोग ज्यों बौर न मिल है आए। कबीर सात समुद मस करो कलम करो बन राय, बसदा कागज जो करो हर जस लिखन ना जाए। कबीर जात जो लाहा क्या करे हृदय बसे गोपाल, कबीर रमैया कंठ मिल चूकै सर्व जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदिर दे जराए, पांचो लड़के मार कह रह राम लियो लाए। कबीर ऐसा को नहीं एहो तन दे वै फूक, अंधा लोग ना जान नहीं रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चेह चढ़ी सुनो वीर मसान, लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दे दिस जाए, जो जैसी संग

पानी सर्वंग कबीर पानी हुआ ता क्या पया सिरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, ऊंच पवन कर कामनी शिखर तजा फहराए, ताते पली मधुकरी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर पाला राम भगत जेठाए, राम स्नेही बाहरा जमपुर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट, तहां कबीर है मटकिया खोज तुम जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ ओड़, हीरा किसका बापरा पुजे नारतन करोड़। कबीरा एका चंबो देखियो हीरा हट बिकाए, बंजन हारे बाहरा कौडी बदले जाए। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है, जहां झूठ तह पाप, जहां लोभ तह काल है, जहां खिमा तह आप। कबीर माया तजी ता क्या पया जो मान तजया नहीं जाए, मान मुनि मुनमर गरे मान सबे को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया, शब्द जो बहया एक, लागत ही पोए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मह चूक, अंधे एक न लाग गई जो बास बजाई है फूक। कबीर है गए बहन सगन कहन छत्रपति की नार, ताश पटंतर ना पुजय हर जन की पनिहार। कबीर निरपनारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सुवार बिखै को ओ सिमरै हर नाम। कबीर थूनी पाई थित पई सतगुर बंदी तीर, कबीर हीरा बन जया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जन जहोरी लेके मंडे हाट, जब ही पाइए पारखू तब हिरण की साट। कबीर काम परे हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित, अमरापुर बासा करो हर गया बहोर बित। कबीर सेवा को दोए पले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जिह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक अवकट काटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान, तब कुल किसका लाज सी जब ले तरह मसान। कबीर डूबे गोरे बापरे बहु लोगन की कान, पारोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर पली मधुकरी नाना बिद को नाज, दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दा जिन होत है निर्दावे रहे निसंक, जो जानो निर्दावे रहे सो ग्रह इंद्र सो रंक। कबीर पाल समूहा सरवर परा पी ना सके कोई नीर, भाग बड़े तै पायो तू पर पियो कबीर। कबीर पर बाते तारे खिसे त्यों एहो खिसे शरीर, ए दो अखर ना खिसे सो गह रहे हो कबीर। कबीर कोठी काठ की दैदस लागी आग, पंडित जल मुए मूर्ख उबरे पाग। कबीर संसा दूर करो काग दे बिहाए, बावन अखर सोध कै हर चरणी चितलाए। कबीर संत ना छाड़ संतई जो कोटक मिले असंत, मलयागर भुजंगम बेड्यो ता शीतलता नात जंत। कबीर मन शीतल पाया ब्रह्म ज्ञान, जिन जो आला जग जा रहा सो जन के उदक समान। कबीर सारी सृजन हार की जाने नाही कोए, कह जाने अपन तनी कह दास दीवानी होए। कबीर पली पई जो पौ परिया, दिशा गई सब पूल, ओरा घर पानी पया जाए मिलियो टलकूल। कबीरा तूर सकेल कै पुरिया बांधी देहे, दिवस चार को पेखना अंत खेहे की खेहे। कबीर सूरज चांद कै उदय पही सब देहे, गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पही सब खेहे। जह अन पौत है पह नहीं, जह पौत है हर ना है, कहो कबीर विचार कै
संत सुनो मन माए। कबीर जिनो किशु जानिया नहीं तिन सुख नींद बिहाए, हमो जो बूझा बूझना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया पीर पुकारे और, लागी चोट मरम की रहो कबीरा ठौर। कबीर चोट सुहेल की, कबीर चोट सुहेली सेल की, लागत ले ओ सास, चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़ा, साई ना बैरा होए, जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए, कबीर जा की दिल साबत नहीं ता को कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी जे सिमरत दुख जाए, दिल में साई प्रगटै बुझै बलंती नाए। कबीर जोर किए कबीर जोरी किए जुल्म है कहता नाउ हलाल, दफ्तर लेखा मांगिए तब होएगो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचरी जा मैं अमृत लोन, हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटे मोह तन ताप, हर सोग दाजे नहीं तब हर आपे आप। कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार, सोई राम सब कह है सोई कौतकहार। कबीर राम मैं राम कहो कहबे माहे बबेक, एका ने कह मिल गया एक समाना एक। कबीर जाकर साधना सेवीए हर की सेवा नाहे, ते कर मरहट सारखे भूत बसै तिन माए। कबीर गुंगा हुआ बावरा बैरा हुआ कान, पावो ते पिंगल पया मारिया सतगुरबान। कबीर सतगुर सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया प्राकृ जे शेक। कबीर निर्मल बूंदिया कास की पर गई भूम बेकार, बिन संगत यो मन नहीं होए गई पठशार। कबीर निर्मल बूंदिया कास की लीनी भूम में लाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाए, साई मुझ से लर परिया तुझे किर फरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर, साई मुझ मैं क्या खता मुखो ना बोले पीर। कबीर जी जो मारे जोर कर कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसू के ना है, जिन एहो रचन रचाया तिसी मैं समाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना कर, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सी है, चिंत पे आपे दे, नानक सो सा लाही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ, फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज, नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाहकी, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ी, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफर फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबैर सातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौसठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो सब कर देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बुझो नहीं घट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जाओ तुहे साध ब्रह्म की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पही ना तेल। ढूंढत डोले अंधगत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद सवैये श्री मुखबाक महला पंजवा आदि पुरख करतार करण करण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल कट रहो ब्यापे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आप उत्पत एक तू ही एक आना ही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखान है हां के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार पर परै ही ते परै अपरे अपार पर आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तार ओपत पर लो एक है निमख तो कर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट प्राप्त जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जिह क्या बखान है हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहो सर मैं आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक है अलख मुरारे आप ही तारण तारे कुदरत है देखा रे वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना है हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्वगुण निधानं कीमत ना ज्ञान ध्यानं ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कौन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलख्या पार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जिही क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंतिक तिल नहीं पासी जा कह होहे कृपाल सुजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जन परसयो से जन्म मरण दो थे रहो सत सत हर सत सत सते सत पणिया दूसरे अन्न अवर पुरख पौ रतन सुनिया अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेहे रसन चाखेओ तेहे जन तृप्त आगाए जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सतसंग ते प्यार हर गुरु नानक जन परसयो तिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीवान सच सचे पै तरयो सच्चा तख्त निवास सच तपावस करयो सच सिरजियो संसार आपया पुल ना पुल्लो रतन नाम अपार कीम न हो पवै अमुल्लो जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन हु पाए हर गुरु नानक जन परसयो ते बौड़ फिर जो ना आए कवन योग कवन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिरकी मना परिए ब्रह्मादिक संकाद से गुण अंत ना पाए अगाव गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जन परसयो ते इत्युत सदा मुक्ते प्रभ दाताओ दातार परयो जाच के कसरना मिले दान संतरेन जेह लग पौ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकर पावै देहो दर्श मन चाओ भगतेओ मन ठहरावै बलियो चिराग अंधियार मैं
ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਮੋਹ ਫੁਨ ਬਾਂਧੀ, ਸੱਠ ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੁਗਿਆਨੀ, ਧਾਵਤ ਭਰਮਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ। ਜੋ ਬਿਨ ਰੂਪ

बरस एक हों फिर किने नौ पर चौ लायो, कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुणाओ क्या कहो, गुरदय मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव रहो। पहर समाध सुना हो ज्ञान है आसन चढ़े आओ, धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े आओ। पह निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे आओ, काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ। पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार, गुर अमरदास सल पान तै दल जितो इव युद्ध कर। कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत ग्रंथ न आवै, रव संस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै, पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै। सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो। गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर्ज ने की आसा, सतगुर से परम पद पायो अब नासी अब गाते आयो। तिस भेटे दर दरना चंपै कल सहार तास गुण जंपै, जंपो गुण बिमल सुजन जन के रे अमे नाम जा को फुरिया। इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और धरिया, हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे। कब कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे, छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया। ते पीवे संत करे मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया, तिन पहु निवार अन पै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे। कब कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे, सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया। जागया मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करे लहा, सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे। कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे, अन पौ उन्मान अकल्यव लागी पारस पेटिया सहज करे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे, मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे। कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे, अपर परे पायो अपार हृदय अंतर धारियो। दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो, सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने। सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने, नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो। गुर रामदास कलुचरै तै अटल अमर पद पायो, संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै। मिलत सांत उपजै दुरत दूरंतर नासै, सुख सागर पायो दिनत हर मग न हुटै। संजम सत संतोख शीरस नहो फुटै, सतगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस तूर बजायो। गुर रामदास कलुचरै तै अपै अमर पद पायो, जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक ते आयो। तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो, नवनिद नाम निधान रिद्ध सिद्ध तां की दासी। सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अबनासी, आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो। गुर रामदास कलुचरै तै हर प्रेम पदार्थ पायो, प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै। सतगुर शब्द अथाह अमे तारा रस गुटै, मत माता संतोख पिता सरसै समायो। आजोनी संपावयो जगत गुर बचन तरायो, आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो। गुर रामदास कुलुचरै तै जगतो धारण पायो,
जगत उधार नाम निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण सहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचर ते शब्द निशान मजायो से सदा सहे शावान संतोख सराय चाओ सदा सील सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचर तो सहे सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवार है जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार है परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाने अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाने गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुम्हू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लेव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कथ होवै जियो तारन तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तार है शब्द रिद विचार है काम क्रोध खोवै जियो जियन सवन दाता अगम ज्ञान बिख्याता एहन इस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दृद्र जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म करम पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है फुन जान को तेरा अपार निरपौ निरंकार अकथ कथनहार तुझे बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना दंडकाल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार अहनिस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सिरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा नामान नाम सोआ पार सार दिनो गुर रिद तार नल कव पारस परस कच कंचना नल कव पारस परस कच कंचना होए चंदना सुबास जास सिमरत अन तार जाके देखत दुआरे काम क्रोध ही निवारे जी हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर राज जोग तख्त दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो प्रगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अग्न देखत गत चरण कवल जास सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राजयोग तख्त दियन गुर रामदास रड जिसै तारियो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सस रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो सुर नर सप्त समुन्दर के तारियो त्रिपवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवण सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणयो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जा तारै
ਪਾਹਣ ਮਾਨਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਉ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ। ਜਾਮ

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत जोग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियं, हस्त कमल माथे पर धरियं, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लहना थाप जोत जगतारी, लहने पंथ कर्म का किया अमरदास पल्ले कहो दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थपे आओ, हर का नाम अखै निद अपे आओ हर नाम अखै निद, चहो जुग गुर सेवा कर फल लहियं, बंदे जो चरण सरण सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियं, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप कोखण परणं, सतगुर गुरसेव अलख गत जा की श्री रामदास तारण तरणं, जेह अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुरदर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुरदर्शन, परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग बंस तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछे जा की सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन मरण पग्गा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की श्री रामदास तारण तरणं, प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया, जस जन कै एक पड़े सुने गावै, प्रभाते करै इशनान इशनान करै प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं रहया पूर बहुविध वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की श्री रामदास तारण तरणं, जिनों बात निश्चल त्रू जानी तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम से भी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसे दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ

चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन गे अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनका मोह भया मन मद का। 84 लख जो ने उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुनारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बेचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन प्याल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। मन ब्रह्मादिक रुद्रादिक, काल का काल निरंजन जचना। गुरप्रसाद पाइए परमार्थ, सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा, वाहगुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद, आद जिस कोई न जाने। शिव ब्रंच तर ध्यान, नित जिस वेद बखाने। निरंकार निर्वैर, अवर नहीं दूसर कोई। पंजन गण समरथ, तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथरा रसना रसै। श्री सतनाम करता पुरख, गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया, त्रुव बुद्ध सुमत सुमारन कौ। फुन त्रम तुजा फहरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण कौ। मथरा जन जान कही जी साच, सो और कछु ना विचारन कौ। हर नाम बोहिथ बड़ो कल मैं, पवसागर पार उतारन कौ। संतत ही सतसंगत संग, सो रंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरयो तरनी तर, आप रहे लिव तारना तावत है। मथरा पन भाग पले उनके, मन इच्छित ही फल पावत है। रव के सुत को तिंत्रास कहा, जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर, सदा सभ्य दर्त नागर। संत मराल करे कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुर्त दूर कर बे कहो, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जुग, कब होक को उपावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहत बरंच जस गावे, जाको शिव मन गहे नात जात कबलास कहो। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख किए फिरत उदास कहो। सो तिन सतगुर सुख पाए, कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई, गुर रामदास कहो। नाम निदान ध्यान अंतर्गत, तेज पुंज तिहो लोक प्रगासे। देख दर्स पटक भ्रम पजत, दुख परहर सुख सहज बिगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत, आल समूह जो कुसम सुभासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर, सचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत, अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत, रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ।
दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कयो एहो तथ, ताहे कहा परवाह काहू की, जां कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहयो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई, अपने आप ही हो पायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुर नर, गण गंधर्व खो जंत फिरे, अबनासी आचाला जोनी संपाओ, पुरखोत में अपार परे, करण कारण समरथ सदा सोई, सर्व जी मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं, तैं हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी, एक मन तन मन धन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूर्त निज तारी, अगम ज्ञान रस रस ओहियो। गुर अमरदास करता।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीर पण तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिध पावै सोई रामदास गुरबल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो न रो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड़ियो पास ताते गौ हर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबसर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पाओ मान तुमली अगर प्रगट सुवास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जेह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कश कही ना जाई सोडी सिरिट सगल तारन कहो अब गुरु रामदास कहो मिली बढ़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। मोह मल बिवस कियो काम गह केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यो चाड़ियो। जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ना पव सागर बंदे आओ सिख तारे सो प्रसन्न। सिर आत पात

गुरजोत अर्जन महे धरी, जग और यहे महात्म मैं, अवतार उजागर आन की आओ, तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। एह पद्धत ते मत चूकै रे मन, भेद बपेद ना जान बियो, पर तच्छ हृदय गुर अर्जन कै, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। जब लव नहीं भाग लिलार उदय, तब लव प्रमते फिरते बहुतायो, कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारण कौ अवतार बनायो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। काल समुद्र पै रूप प्रगट हर नाम उदाहरण, बसै संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण, निर्मल पेख अपार तास बिन अवरना कोई, मन बच जिन जाने आओ पयो तह समसर सोई, तरण गगन नव खंड मह, ज्योत स्वरूपी रहो पार, पन मथुरा कश भेद नहीं, गुर अर्जन पर तख हर। अजय गंग जल अटल, सिख संगत सब नावै, नित पुराण बाचियै, वेद ब्रह्मा मुख गावै। अजय चवर सर ढोलै, नाम अमृत मुख लियो, गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पै गयो, हर वंश जगत जस संचरयो, सो कवन कह श्री गुरमोयो। देवपुरी मैं गयो, आप परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो, श्री गुर तह बैठायो। रैस पियो सुरदेव, तोहे जस जय जय जंपै, असुर गए ते भाग, पाप तिन पीतर कंपै। काटे सो पाप तिन नर होके, गुर रामदास जिन पायो, शत्र सिंहासन।

क्यों न पजै भगवान। तन धारा संपत सगल जिन अपनी कर मान, इनमें कछ संगी नहीं नानक साची जान। पतते उदार

तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके धाम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत पांच तत्

कट कट में हरजू बसे संतन कहो पुकार, कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार। सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्त निंदया नाहे जेह कंचन लोहो समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। पै काहू कौ देत नह नह पै मान त्यान, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी सब ते पयो उदास, कहो नानक सुन रे मना तहकट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी करता राम पशान, कहो नानक वह मुक्त नर एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम, निस दिन जो नानक भजै सफल होहे तह काम। जेह बागुन गोबिंद पजह करण सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना परह न जम कै ताम। जो प्राणी

और न लेत उधार। जो सपना अर्पेख ना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस्दिन माया कारण प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जह चीत। जैसे जलते बुध बुदा उपजय बिन सह नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कशु ना चेतई मद माया कै अंद, कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख को चाहे सदा सरन राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे। माया कारण ता वही मूर्ख लोग या जान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोविंद नाम, कहो नानक बिन

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाय होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया मैं रम रहे हो निकसत नाहिन मीत। नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई। चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए। कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्व करत है देह को बिन सैशन में मीत। जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जेह प्राणी कै नाहे मन। जैसे सुकर स्वान नानक मानो।

सिर कंपियो पग डग मग नैन जोत ते ही ना कहो नानक यह बिद पई तउ नहर रसलीना। निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाहे नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान लिहो रे मीत कह नानक।

एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए, जो उपजियो सो बिरस है परों आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल, दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कशु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय, संग सखा सब

राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली

बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र पैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौशकिया लाप संग रागनी पांचौ थाप गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशको भारा खौ खटियाओ पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुण्य आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए सरस बाण औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गावे पांचो संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसावरी तेह पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यों पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावे पांचो संग बरंगन लावे सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुनगुनी ऊचे सुरसुहो पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचो चीनी बैरा तार गज तर के दारा जबली तर नट औ जल तारा पुन गावे शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस
ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ ਅਠਾਰਹਿ ਦਸ ਬੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कर नौन दे आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसीस दित्ते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाण दी सेवा करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति हुई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनिया पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदियां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा।

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवीऐ, अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मुह पख सार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पहावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे।

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो

गावहे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नरखी सरे जोग

हर दया बहु संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तुम कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक।

जिन निरपहो जिन हर निरपहो त्याया जी तिनका पहो सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे

एक पाद गंधवेन सहस्ताव गंध एव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस पावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकर

जिन कौ सतगुरु थापिया तिन मेट न सकै कोय। ऊना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए। नाओ पूजिए नाओ मनिए अखंड सदा सच सोए।

धात कौ सिफ्ती सिफ्त समाए लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिले संतोखिया हर जप एक कै पाए पाई।

महल प्यार। गुरुमुख मन समझाइया है आत्म राम विचार, त्रिविध कर्म कमाइया है आस अंदेसा होए। क्यों गुरबिन त्रिकुटी छुट सी, सहज मिले है सुख होए। निज घर महल पछाणी है, नदर करे मल तो होए। बिन गुर मैल ना उतरे, बिन हर

वसहि ज्यों पावै त्यों निर्जास। जियरे राम जपत मन मान अंतर लागी जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ। अंतर की गत जानिए गुर मिलिए शंख उतार मुया जित कर जाइए तित जीम दया मर मार अनहद शब्द सुहावणे।

एहो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लोभान शब्द न पीजै साकता दुर्मत आवन जान साधु सतगुरु जे मिलै ता पाईऐ गुणी निधान मान रे हों मैं छोट गुमान हर गुर सरवर सेव तू पावह दरगह मान रहाओ राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ से व्या सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे भूला दुख कणो जम मार करे फुलहान मन मुख सुख न पाइए गुरमुख सुख सुभान ऐसे तंद पिटाइए सच लिखत परवान।

पाया नाम निदान, अंतर हर सरव रहया चूका मन अभिमान, हृदय कमल प्रगासया लागा सहज ध्यान, मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान। सतगुरु सेवन अपना ते विरले संसार, हौं मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार, हौं तिन

दत्ते से निर्मले हों सद बलिहार जास। हृदय जिनका हर बसै तितकत है परगास। मन मेरे हर हर निर्मल त्याय,

गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हर से पील बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है।

पार। गुरमुख जब तब संजमी हर कै नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार। श्री राग महला तीजा। मनमुख मोह व्यापया बैराग उदासी ना हो। शब्द न चीने सदा दुख हर दरगाह पत खोए। हम मैं गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए। मेरे मन अहनस पूर रही नित्यासा। सदगुर सेव मोह पर जलय कर ही माहे उदासा रहा। गुरमुख कर्म कमावे बिगसै हर बैराग आनंद। अहनस भगत कर

परे से जन शब्दे सोहणे तित सच्चै दरबार गुरमुख सच्चै शब्द रते आप मेले करतार गुरमती सच सलाहणा गुरमती सच सलाहणा जिसदा अंत ना पारावार घट घट आपे।

सब जग महचानन होए। श्री राग महला पंजवा, मन बिलास बौरंग कणा, दृष्ट फूल खुशियां, शतर धार बादशाहियां, विच सहसे परियां, पाई रे सुख साध संग पाया, लिखिया लेख तिन पुरख बिधाते।

पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख बसिया मन आए अंतर जोत परगासिया एक स्यों लिवलाए मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखया पाए गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए मेरे मन गुर शब्दी सुख होए

पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ विनसया तजया सब अभिमान।

आप होवा मेहरवान, सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना कौ राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार।

जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभु शरणाई पाए हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह।

नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा। प्रीत लगी तिस सच सिउ, मरै ना आवै जाय, ना वे छोड़िया बिछड़े, सब महरा।

अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निहचल तिस दरबार जो मंगिया सोई पाइए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरहै मन तन हो वह शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात जिनका पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तान मान तहन अर्पी सबो सगल वारिय ए जिंद देखै सुने हदूर साध कट कट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवां।

पूर, भक्ति नाम विहूणिया आवह वन्यह पूर। राख लेहु प्रभ करण हार, जी जंत कर दया, बिन प्रभ कोए ना रखण हार, महा बिकट जम पया। नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया। श्री राग महला पंजवा मेरा।

राम नाम अमृत नगर निहाल, मन मेरे सदगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी, एक निमख न मनहु विसार। रहा

दूर थान थन तर रव रहया प्रभ मेरा परपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजियो।

संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट। मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूकै सोग संताप। रहाओ जिस कारण तन तहरिया सो प्रभ डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभ अपनी नदर निहाल। मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन नावन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहा।

विचार। नानक ते शरणागति जे सगल कटां आधार। श्री राग महला पंजवा। रसना सच्चा सिमरिया मन तन निर्मल होए। मात पिता साख अगले तिस बिन अवर ना कोए। मेहर करे जे अपनी चसा न विसरे सोए। मन मेरे साचा सेव जिचर सास बिन सच्चे।

रहाव, सगल पदार्थ तिस मिले। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए। गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है, करण कारण समरथ, से मथे ने चल रहे जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अग खंड, जिन गुर सेविया अपना, जमदूत न लागै डंड। गुर नाल तुल न लगई, खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवां।

रहाउ। जिचर वस्या कंत घर जियो जियो सब कहात। जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पुछे तेरी बात। पेयड़ै शहु सेव तू साहुरड़ै सुख वस। गुर मिल चज अच

आधार तिसहत्या बहुमन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन माहे त्याय, गुर के चरण मन मह त्याय, छोड़ सगल सियान पा साज शब्द लिबलाए रहाओ। दुख क्लेश ना पौ व्यापै गुर मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए। देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे, हौं तिन कै बलिहारने जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन बसै साच हर का नाव, सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ। श्री राग महला पंजवां संच हर तन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार जिन तू साज सवारिया, हर सिमर होए उधार।

संसार आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दो

सतगुर शरणी आया बाहुड़ नहीं बिनाश। हर नानक कदे न विसरो इहो जियो पिंड तेरा सास। श्री राग महला पंजवा।

सच्चा नाम सास गिरास ना विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाईए सच नाम गुणतास।

ना जाए, नित रवै सुहागणी साची नदर रजाए। साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है, कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया। मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी।

श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहज

क्यों चिर रहै सुहाग भाई रे अवर नाही मैं थाऊ मैं तन नाम निदान है गुरजिया बल जाऊ रहाऊ।

पतार मान रे राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणी गुर मेली गुण चार साच

आहार संत सभा सुख उपजय गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजय खिन खपै खिन आवै खिन जाए शब्द पछा

पूरा तोल, कथने कहन न छुट्टिये, ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच न पाइये, बिन हर भगत प्यार। नानक नाम ना विसरे, मिले गुर करतारु, श्री राग महला पहला। सतगुर पूरा जे मिले, पाइये रतन विचार, मन बीजे गुर अपने, पाइये सर्व प्यार। मुक्त

सोए गुर भंडार पाइये निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिये पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संहार पवजल बिखमंडरा।

पीर रे मन ऐसी हर्ष्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवे खे सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवे के हे कर्म मिले सो पाई किरत पया सिर दे

तिड़ मल बिन गुड़ प्रीत न उपजै होमे मैल न जाए सोहं आप पछाणिए शब्द भेद पति आए गुरमुख आप पछाणिए।

गवाइए शब्द सच्चा सच पाख आकाशी पाताल तुम त्रिभवन रहया समाय आपे भक्ति पाओ तुम आपे मिलह मिलाय नानक नाम न विसरै ज्यों पावे त्यों रजाय श्री राग महला पहला राम नाम मन बेदया अवर के करी विचार शब्द सुर

मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, आनंदन भगत करह

पंखी बिरख सुहावड़े ऊट है चौ दिस जाए जेता ऊट है दुख घने नित दाज है तै दिल लाहे बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाय शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाय अमृत फल हर एक है आपे देखवाय मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना छाओ तिन्ना पास न बैसिय ओना कर ना गिराओ कटिय है तै नित जालिय है ओना

अंक समाए, हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए, पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए, गुरमति हर सदा पाया, रसना हर रस

जियो। हो सतगुर विट हो कुमाया, जिन भ्रम भुला मार्ग पाया। नदर करे जे अपनी, आपे लै रलाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करतै आप लुकाया। नानक गुरमुख प्रगट होया, जां कौ जोत धरी करतार जियो। आपे खसम निवाजया, जियो पिंड दे साजया। अपने सेवक की पैज रखिया, दोए कर मस्तक धार जियो। सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब किछ जानदा।

सब सचो सच वर्तदा जिस पावे तिसै बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे ले समाए जियो गोपी ने गोवालिया तुद आपे गोए उठा लिया हुक्मी भांडे साजया तू आपे पन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन दूजा भाव चुकाया जिन सत

विटहु कुर्बान जियो। हर इठे नित ध्याएंदा, मन चिंदी सो फल पाएंदा। सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो। मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा।

चले मूल गवाए जियो। तू वरना चिहना बाहरा हर दिसह हाजर जाहरा। सुन सुन तुझे ध्यान दे तेरे भगत रते गुणतास जियो। मैं जुग जुग दई ऐसे बड़ी गुर कट्टी मेहंदी जेवड़ी।

करम धर्म नहीं पूजा। नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए। जोबन घटै जरुआ जणै, वणजारिया मित्रा आम घटै दिन जाए। अंत काल पछतासी, अंधले जां जम पकड़ चलाया।

खांडवर पांड हर सोभा होई इहुदान ना रलै रलाया और मन मुख दाज जे रख दिखा लह सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबुला हर देव हुदान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबुला फिर मिल तन वेल वदंदी हर जुग है जुगो जुग।

देवे अलाख अपेवे निहचल आसन पाया तह जन्म न मरण न आवन जाना संसार दुख मिटाया चित्र गुप्त का कागद फारिया जम दूता कछु न चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लदे खेप सवली।

सतगुर तुठे लड़ लीने लाए नौ निद पाए नाओ सर्बस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के।

अधहरे, गुण साध संग मिल गावे। नानक के स्वामी तार अनुग्रहो, मन तन अंक समावे। दखना सो हंदड़ो हब ठाए, कोय न दिसे डूजड़ो। खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट ते।

जियो। हर कंठ लग सोहया, दोख सब जोहया, भगत लखियण कर बस पए। मन सब सुख बुठे, गोविंद तुठे, जन्म मरना सब मिट गए।

नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर न करना जाए महला तीजा। होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार, नानक बिनना मैं को थिर नहीं पढ़ पढ़ होए खुआर। पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का, हर की वड्याई।

हैं तिस सब किश मिले इतना दूर है पास तुद बाज हो थाओ को नाही जिस पास हो मंगी है मन वेखो को निरजास सब तुद नु साला हुंदे दर गुरमुखा नु परगास। सलोक महला तीजा पंडित

पौड़ी। हर की सेवा सफल है गुरमुख पावै थाई, जिस हर पावै तिस गुर मिले, सो हर नाम ते आए, गुर शब्दी हर

कमाए, कूड़ कुसात कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर से तीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी, हर के संत सुनहु जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लै हृदय राखी, हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम,

पूजियै बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावै सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटया पुरुषोत्तम

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग पौजल गुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेरे

सारंग पाणी तन सो देश जहां तू बसया मेरे सज्जन मीत मुरारे जीओ हों कोली हों कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जीओ रहाओ एक कड़ी न मिलते ता कल जुग होता हुन कद मिलिए प्रिया तुद भगवंता।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए है, तू आपे मन मुख जन्म पवाए है। नानक दास तेरा बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला। शब्द आनंद करे सद केला, सहज गुफा महताड़ी लाई। आसन ऊच सवारया जियो, फिर किर अपने ग्रह में आया। जो लोड़ींदा सोई पाया, तृप्त अगाए रहया है संत हो। गुर अनपौ पुरख दिखारया जियो, आपे राजन आपे लोगा। आप निर्वाणी आपे भोगा, आपे तख्त बह सच न्याई। सब चूकी कूक पुकारया जियो, जेहा डिठा मैं ते हो कहया। तिस रस आया जिन भेद लहया,

यो अचार वंत साई परधाने सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने सा कुलवंती सा सबराई जो पिर कै रंग सवारी जियो महिमा तिसकी कहन ना जाए जो पिर मेल लई अंग लाए थिर सुहाग वर अगम अगोचर जन नानक प्रेम साधारी जियो माज महला पंजवा खोजत खोजत दर्शन चाहे भांत भांत बन बन अवगाहे निर्गुण।

धरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवै जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो कर कृपा मोहे साध मिलाया मन तन शीतल धीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावह गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाईऐ होरत कितै न भांति जियो निरहारी केशव निरवैरा कोट जना जाके पूजहै पैरा गुरमुख हृदय जाकै हर हर सोई भगत एकांति जियो अमोग दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दातारा गुरमुख नाम जपियै तित तरियै गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवां।

अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपो मन सिमरत ठंडा थी मां जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊंच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृप्तायन।

गुरमत बिनसी एक बुद्ध अभागी सच घर बैस रहे गुण गाए नानक बिनसे कूरा जियो माज महला पंजवां।

जाता जो तुद मन भाने तिन कै संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अगाना जियो माज महला पंजवा तू जल निध हम मीन तुम्हारे तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखहारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो ज्यो बारिक पीखीर अगावे ज्यो निरतन तन देख सुख पावे त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो ज्यो अंधियारे दीपक परगासा परता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख सगले देखे।

गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त भया जिस हृदय बसेरा, गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो, माज महला पंजवा, प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो, उठत बैठत सोवत जागत, हर त्याय सगल अवरदा जियो, नाम औखद मोकौ साधु दिया, किल बिख काटे निर्मल थिया, आनंद भया निकसी सब पीरा, सगल बिनासे दरदा जियो, जिसका

साहिब भावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकुर सब बिद जान है, ठाकुर के सेवक हर रंग मान है।

बिचारा अनद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जियो जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया।

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा धार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी

सो सच स्वामी, रिजक सब सकौ दीए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाई, सब भौ बिनसै हर हर त्याई।

हारे दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो जल थल पूर रहया मेहरबाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिनस तिस सदा त्याई जे खिन मैं सगल उधारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल।

गोविंद प्रभ नानक सर्व समाहया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जित सच त्याई है सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा धरत सुहावी जित वसह हर जन सच्चे नाम बिटहु कुर्बानो जियो सच बडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म न कह।

सबल एहा है कारी जियो, दृष्ट धार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या जिस

सो गुर मिल निहचल कहना। प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावे अनदिन नित जागी। बहां पकड़ तिस स्वामी मिले, जिस कै मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन बुठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे। संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइय।

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

गुरमुख मैल चुका बनिया, गुरमुख मैल चुका बनिया, माज महला तीजा। गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उजल सदा।

मिलै ता चूकै फेरा, जां तुद भावै ता नाए रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमति हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, एक सिउ लिव लागी।

शब्द पछाण गुरमुख मरै ना काल ना खाए गुरमुख सच समावणे गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विच हो आप गवाए आप तरह कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारणे गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हो मैं चूकै पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल न लागे गुरमुख सहज समावणे गुरमुख नाम मिले वडियाई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावणे गुरमुख

वेद पढ़े हर रस नहीं आया, वाद बखान है मोहे माया, अज्ञान मती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावणिया, अकथो कथिए शब्द सुहावे, गुरमति मन सचो पावे, सचो सच रवहै दिन राती, इह मन सच रंगावणिया।

आठ पहर तुद जापे पवना धरती सेवक पायक चरणा खाणी बाणी सर्ब निवासी सबना कै मन पावणिया साचा साहिब गुरमुख जापे पूरे गुर कै शब्द सियापे जिन पिया से ही तृप्ता से सच्चे सच अगावणिया तिस कर सहजा सोई सुहेला आनंद बिनो

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सुख है कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन विद मिली।

गुरमुख कर्म गुरमुख निह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया।

रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिन कौ रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली।

ही हंत दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थाओ हर ओट

मर जाती। गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती। तू आप सुजान है वट पुरख बिडाती।

विचार महला पहला वस्त्र पखाल पथाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बाहरों मल मल धोवे अंधा फूल पया जम जाले वस्त्र पराई अपनी कर जाने होमै विच दुख काले नानक गुरमुख होमै टुटे ता हर हर नाम त्यावे नाम जपे नामो आराधे नामे सुख समावे पवड़ी

आहे वन खंड वासा एक भगवान वेस कर फिर है जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत साधन भोजन की आसा बिरथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा जमका

आप बुझाए सोई बुझे, जिस आप सुझाए तिस सब किछ सूझे। कह कह कथना माया लूझे, हुक्मी सगल करे आकार। आपे जाने सर्व विचार, अखर नानक अखियो आप। लह प्रांत होवे जिस दात पौड़ी।

भगत करह मूर्ख आप जनाव है, नच नच टप है बहुत दुख पाव है। नचया टपया भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वचन

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जोनी पाए। गुरमुख

तेई अड़ै दिन चार है हर हर लिख पाया सो बावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेव कड़ै गुण समलै सहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससुरै पेय फिर बसै कहो कित बिद पाइय।

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुन

दिन सजाए पूरा कछ पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

तावत पंच रहे हर त्याया, आन दिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूड ते आगे हर लिव लाई। ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर भावै। कृष्ण बल भद्र गुर पग लग प्यावै।

पोचार। त्यों सतगुरु गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं इयाणे। धन धन गुरु गुर सतगुर पांधा।

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख त्यों ठाडे हम भूल चूक।

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासयो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया तारी, तिन जम जोहन लागे।

सब सतगुर आगै जिन विछड़िया हर गल लाया मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया सहज अनंत

पुर पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रत।

मिल पूर्व लिखियड़े तुर करमा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो, मन मोर

इस ग्रह में कोई जागत रह साबत वस ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसन हा

आठ पहर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हों तिस बल जाऊं। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, चौ पदे दो पदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना, जो तज छोड़न तिस स्यों मन रचना।